दोनों दरियाओं से मोती और मूंगे निकलते हैं तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे? और जहाज भी उसी के हैं जो दरिया में पहाड़ों की तरह ऊंचे खड़े होते हैं तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे?

फिर जब आसमान फटकर तेल की तिलछट की तरह गुलाबी हो जाएगा तो वो कैसा हौलनाक दिन होगा। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। उस रोज ना तो किसी इंसान से उसके गुनाहों के बारे में पुरसिश की जाएगी और न किसी जिन से। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे।

अहले जन्नत ऐसे बिछौनों पर जिनके अस्तर अतलस के हैं तकिया लगाए हुए होंगे और दोनों बागों के मेवे करीब झुक रहे हैं, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे। उनमें नीची निगाह वाली औरतें हैं जिनको अहले जन्नत से पहले न किसी इंसान ने हाथ लगाया और न किसी जिन ने, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे। गोया वो याकूत और मरजान है, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे।

सुबह के 7 बजे हैं। अस्सलामुअलैकुम। आज इतवार है, रबीउल सानी की 14 और सितंबर की 27 तारीख। ये रेडियो पाकिस्तान है। मुदस्सिरा अथर से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। नायब वज़ीर आज़म ने फ़लस्तीनियों के हक़ खुद इरादियत के लिए पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इरादा किया है। वज़ीर इत्तला'आत ने कहा है कि वज़ीर आज़म ने अक़वामे मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में पूरी उम्मत मुस्लिमा का मुकदमा वाज़ेह अंदाज में पेश किया। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने मक्का मुकर्रमा को निशाना बनाने वाले हमलों के खिलाफ मुश्तरका कोशिशें जारी रखने के अज़्म का इरादा किया है। आलमी यौम सयाहत आज मनाया जा रहा है। गजा पर इसराइली हमलों में मजीद 2 फलस्तीनी शहीद हो गए हैं। जापान में एशियाई खेलों के हॉकी मुकाबलों में पाकिस्तान अपना अगला मैच कल अम्मान के खिलाफ खेलेगा। खबरें तफसील से। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने फ़लस्तीनी अवाम के हक़ खुद इरादियत और एक आज़ाद खुद मुख्तार और मुत्तसिल फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इरादा किया है। उन्होंने ये बात न्यूयॉर्क में मकबूज़ा बैतुलमक़दस के बारे में अरब लीग और 4 इस्लामी ममालिक के वजारती इजलास में शिरकत के दौरान कही। नायब वज़ीर आज़म ने मस्जिद अक्सा के खिलाफ जारी दरअंदाजी और मकबूज़ा मशरक़ी बैतुलमक़दस की तारीखी और कानूनी हैसियत तब्दील करने की कोशिशों पर तशवीश का इजहार किया। इसहाक़ डार ने मकबूजा बैतुलमक़दस में इस्लामी और मसीही मुकदस मकामात के मुतवल्ली की हैसियत से उर्दन के लिए पाकिस्तान की मुस्तकिल हिमायत का भी इरादा किया। उधर इसहाक़ डार ने न्यूयॉर्क में अक़वामे मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के 81वें इजलास के मौके पर उर्दन के नायब वज़ीर आज़म एमन सफदी से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल और पाकिस्तान और उर्दन के दरमियान ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम बनाने के अज़्म का इरादा किया। वज़ीर इत्तला'आत और नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अक़वामे मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में पूरी मुस्लिम उम्मा का मुकदमा 2 टोक अंदाज में पेश किया। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म ने फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइली जारहियत की वाज़ह अल्फाज में मज़म्मत की और फ़लस्तीनी बच्चों हिंद रजब और वफा अकीला की अलमनाक दास्तानों को उजागर किया। अता तारड़ ने कहा कि वज़ीर आज़म की तकरीर को दुनिया भर में सराहा गया जबकि जनरल असेंबली में फ़लस्तीनी नुमाइंदों ने तालियां बजाकर दाद दी। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मसले कश्मीर पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ का इरादा करते हुए वाज़े किया कि हक़ खुद इरादियत हर कश्मीरी का बुनियादी हक है। सिंध तास मुआहिदे को यकतरफा तौर पर मुअत्तल करने के भारतीय इकदाम का हवाला देते हुए अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि वज़ीर आज़म ने वाज़े किया कि पाकिस्तान के हिस्से का पानी रोकने, उसमें रुकावट डालने या उसका रुख मोड़ने की कोई भी कोशिश ऐलाने जंग तसव्वुर की जाएगी। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने मक्का मुकर्रमा और सऊदी शहरी और इक्तसादी तंसीबात को निशाना बनाने वाले हमलों के खिलाफ मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे के तहत मुश्तरका कोशिशें जारी रखने के अज़्म का इरादा किया है। सऊदी वजीर दिफा खालिद बिन सलमान ने समाजी राबते की वेबसाइट एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि रियाज ने मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे में शामिल ममालिक की अफवाज के सरबराहान के इजलास के नतायज को सराहा है। उन्होंने कहा कि इजलास में मक्का मुकर्रमा को निशाना बनाने वाले हमलों के साथ साथ मुमलिकत में शहरी और इक्तसादी तंसीबात पर हमलों पर भी तबादला ख्याल किया गया। सऊदी वजीर दिफा ने कहा कि उन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से भी मुलाकात की। आलमी यौम सयाहत आज मनाया जा रहा है। बैन अल-अक़वामी तिजारत के अहम शोबों में सियाहत नहायत अहमियत की हामिल है और बहुत से तरक्की पजीर ममालिक के लिए आमदनी के बड़े ज़राए में से एक है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि हुकूमत मुल्क भर में सियाहत के फरोग के लिए फाल इकदामात कर रही है। आज मनाए जाने वाले आलमी यौम सियाहत के मौके पर अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान को एक महफूज पुरकशिश और मसाबकती सियाहती मकाम के तौर पर दुनिया के सामने पेश करने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान का मुतअद्दिल आज मनाए जाने वाले आलमी यौम सियाहत के मौके पर अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान को एक महफूज पुरकशिश और मसाबकती सियाहती मकाम के तौर पर

0: feels like your favorite FM 101.
1: आपके लिए FM 101 प्ले कर रहा है आपकी पसंद का म्यूजिक.

आवाज की दुनिया का दोस्त, मालूमातो तफरी का साथी, मेरा आपका हम सबका FM 101 रेडियो पाकिस्तान, कौम की आवाज।

0: सारा दिन गाना सुनता रहे। पसंद रसो को है
1: दादाजी दादा सुन पे जने दाखो अली जफर दे।
0: होगा भाई हमने गाना वाला बड़ा देख। हम तो तब मानेगा जब हमारा जुबान मिलेगा।

आवाज की दुनिया का दोस्त, मालूमातों तफरीह का साथी, मेरा आपका हम सबका FM 101 रेडियो पाकिस्तान।

आवाज की दुनिया का दोस्त, मालूमातों तफरीह का साथी, मेरा आपका हम सबका एफएम 101 रेडियो पाकिस्तान

0: सुबह के 9 बजे हैं। अस्सलामुअलैकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। मुदस्सिरा अथर से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। नायब वज़ीर आज़म ने फलस्तीनियों के हक़ खुद इरादियत के लिए पाकिस्तान की गैर मुतज़ल्ज़ल हिमायत का इरादा किया है। वज़ीर इत्तला'आत ने कहा है कि वज़ीर आज़म ने अक़वामे मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में पूरी उम्मत मुस्लिमा का मुकदमा वाज़ेह अंदाज में पेश किया। मारूफ पसे पर्दा गुलूकार मुनीर हुसैन की 31वीं बरसी आज मनाई जा रही है। जापान में एशियाई खेलों के हॉकी मुकाबलों में पाकिस्तान अपना अगला मैच कल अम्मान के खिलाफ खेलेगा। खबरें तफसील से।
1: This is FM 101.1.
2: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पिशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लारकाना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, बन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर। द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। Tune in to the one above, FM 101.1.
3: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan.

0: Moving. Hotwired Radio. Today's best music. U101. Electric.
1: सेहत की बात साई लाइफ के साथ वर्ल्ड हार्ट डे की मुनासिबत से इस प्रोग्राम का मौजू होगा कोलेस्ट्रॉल और उसके बढ़ने की वजूहात। इस प्रोग्राम में हमारे मेहमान होंगे डॉक्टर मोहम्मद वकास जावेद, कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट, हेल्थ ब्रिज हॉस्पिटल लाहौर। जुमा 25 सितंबर 2026 शाम 5 बजे सिर्फ FM 101 लाहौर पर। यह प्रोग्राम आपके लिए साई लाइफ फार्मा के तआवुन से पेश किया जाएगा।

0: दिन के 12 बजे हैं। अस्सलामु अलैकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। सोनिया अदनान से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि हुकूमत मुल्क भर में सियाहत की भरपूर इकदामात कर रही है। पंजाब की वज़ीर-ए-आला ने कहा है कि सूबे में मजहबी सियाहत के फरोग के लिए मौसर इकदामात किए जा रहे हैं। कराची के नौजवानों ने नए सूबों के कयाम की भरपूर हिमायत का इजहार किया है। अमरीका में मुकीम कश्मीरी बरादरी ने भारत के गैर कानूनी जेर कब्जा जम्मू कश्मीर के आवाम से इजहार यकशहती के लिए न्यूयॉर्क में अक़वामी मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया। खबरें तफसील के
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लारकाना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, बन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर। द बिगेस्ट एफएम रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव एफएम 101.101।
2: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

तुमने कहीं तुम रस्मन ही पूछ लेना मुझसे हाल मेरा, मैं मुस्कुरा कर गम छुपा कर ही जवाब दूंगा, मैं यही करता आया हूँ, यह कमाल मेरा।

लो जी, जिंदगियां तुसी भी सोहनिया गुजारदे पे हो, मैनू यकीन है। और अलहमदुल्ला मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हाँ। प्रोग्राम के आगाज़ के प्रोग्राम के नाल मुहब्बत करने वाले लोग शामिल हो गए, जिन्हां दे विच न्याज ड्राइवर ने। न्याज ड्राइवर प्रोग्राम सुनते पे ने, प्रोग्राम नूं पसंद पे करते हैं, आखते पे ने अज असी रेडियो लिसनर क्लब के जिहड़े बंदे आ, शमसी रेडियो लिसनर क्लब के, असी किसी थां ते इकट्ठे हो रहे हैं सारे, ते ओ हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, ते गैट टूगैदर कर रहे हैं, ते हलवा शलवा पकावांगे, ते गुड़ शुड़ लियावांगे, ते लस्सी लुस्सी भी पीवांगे, ते तुसी भी जने आ जाए। मैं आखा भाई अजे मेरे साइकिल दा साथ दिता उसने, अपना चैन ने ओ ना लत्था बार बार, ते मुड़ मैं तुहाडे पासे आ जासा, ते जे साइकिल गड़बड़ कीती ते मुड़ मैं कोई नहीं आवना। बहरहाल तुहाडा शुक्रिया, तुसां आख्या कि सलाम दिओ सारे दोस्तां नूं, शमसी रेडियो लिसनर क्लब दे दोस्तां नूं और रजा चौधरी नूं ते बाकी नूं। मैं जनाब तुहाडे सलाम पहुँचा छड़े भाई जान, तुसीं तुहाडा हुक्म से रखी ते हो गया। उज़मा खान प्रोग्राम सुणदे पए ने, प्रोग्राम दे विच शामिल होए ने, आख्या ने कि मैं अज घर दे सारे काम जल्दी जल्दी नबेड़ने, इस वजह तू कि मैं पता तुसा आ जाना, और तुसी आके ते फिर जो बोलते हो तो मेरा दिल करता है कि मैं एक लम्हा भी एक मिनट भी इधर उधर ना हो, इस वजह तू मैं जल्दी जल्दी दे विच सारे काम अपने घर दे नबेड़ लेने। बड़ी गल है जी, फरी चुबुर जी तू प्रोग्राम दे विच शामिल हो गए ने, फरी आख्या कि उन्हां सारयां नूं मेरे एक तो सलाम दिओ जिहड़े शमसी रेडियो लिसनर क्लब वाले ने जां रेडियो पाकिस्तान दे सुनन वाले ने, ते दूआ जनाब जिहड़ियां औरतां इस टाइम अपने किचन दे विच मसरूफ ने, खाने खुने पकाइंदियां पईआं ने, उन्हां दे नामे भी एक सोहणा जिहा गीत करो। मैं आख्या जनाब हुकम से रखी, ते इह किहड़ा काम है, आख्या तुसां ते करना मैं, ते इह दसणा ने मैनू कि अज की करदे पए हो, अज की मसरूफिया, ते तुहाडी अज दा की प्रोग्राम है, किसे मेहमान ने आना है, या तुसीं किहदे अल बतौर मेहमान जाणा है, या फिर कोई स्पैशल खाणा पकाणा है, या की करना है। और एक बड़ा पुराना जिहा गीत ये मैं करांगा मोहम्मद नवाज़ भाई दे नामे, नवाज़ भाई रायवंड रोड तो सुनते पे ने प्रोग्राम, उन्हें जिहड़ा गाना आख्या वह मैनू लभ्या कोई नहीं, लेकिन यह गीत उन्हां दे नामे करांगा, यकीनन पसंद आएगा। सारी उम्र करां तेरी सेवा।

लो जी उस्मा खान दोबारा प्रोग्राम दे विच शामिल। उस्मा खान थैंक यू सो मच, आख देने प्रोग्राम फंटास्टिक कर रहे हो। रियाज भी 18,000 जंग तो प्रोग्राम दे विच शामिल। रियाज भाई हुण ना आया करो, हुण सर्दियां दा मौसम आ गया ते अगली गल दा तुहानू

अच्छा मैनू ना कल बैठा तो गल बड़ी मेरे जहन च आई, मैं आके जाके थोड़े सारे नाल ना मैं शेयर करनी है। वो गल ये आई भाई केड़ा सियाना सिस्टम है साढ़े उन्होंने लोगों का, जेडे रिवायात के कायल ने, जेडे रख रखाव के कायल ने, उन्होंने की कित है कि वो जिस खाना खाते ने ना वो तकरीबन सारा टब्बर रल के बह के खाते ने। और वह मैं पुराना वक्त याद आया कि जदा चंगेरा होंदिया सन और सारे लोगों ने कट्ठे बह जाना मंजियां ते या पीढ़ियां ते, लाहौर वाले बच्चों तो बेचारे पीढ़ियां का पता ही कोई नहीं आना शायद, तो पीढ़ियां रखी हुई होनी मां दरम्यान बैठी होनी, चंगेरे च रोटियां पई होनिया, नाल हांडी होनी, उन्हें पा पा के खवाई जाना और इस इंतजार ही रहना कि जो सारे खा के उठणगे तो फिर मैं खुद खाना खावगी। उस सिस्टम नूं मैं बड़ा मिस किया, उस जिहड़े वो हालात आन उन्हां चीज़ां नूं मैं बड़ा याद किया भी कित्थों लाया भी वो चंगेर, कित्थों लाया भी ये भी वो रुमाल जिन्ना रोटियां डांपियां होंदियां, कित्थों लाया भी वो माहौल के चारों पासे सारे घर के फैमिली मैंबर बैठे होण, विच मां बैठी होवे पा पा के खाने पी देंदी होवे और इस इंतजार दे विच होवे कि जदों ये सारे खा लैणगे उस तो बाद मैं खाना खावांगी, फिर मैं बर्तन सारे समेटांगी। तो मैं तुहाडे कोलों पुछां कि क्या तुसीं भी अपने घर दे विच इही सिस्टम रखे होया कि सारे इकट्ठे बह के खाना खाते हो, या जिहड़ा आया उस अपना खाधा टुर गया, दूआ आया उस अपना कढ़िया टुर गया, तीजा आया उन्हूं किसे पा के दिता वो खा के टुर गया। इस ते थोड़ी जी नज़रसानी करिया है, अगर असी एक टाइम दे विच सारे मिल के खाना खा लवीए, बह के इकट्ठे खा लवीए तो उहदे विच शायद होर बरकत होएगी। मैं एक दोस्त दे घर गया तो वह तीन भाई होवन, तो उन्हां दा एक अजीब सिस्टम कि जनाब उन्होंने खाना पकाना तिना ने अलग अलग, यानी वो फैमलियाँ अलग अलग ने, लेकिन तिना ने ही हांडियाँ लैके तो रोटियां लैके आ जाना है, तो तीनों फैमलिया ने कट्ठे बह के खाना, उन्हें आपस से डिवाइड करना, एक दूजे दे भी लेना है, तो एक दूजे लिए इतराज़ भी कोई नहीं, इन्हें चंगा पकाया तो इन्हें माड़ा पकाया, ये काम नहीं करती तो इन्हें बर्तन नहीं धोते तो इन्हें बच्चे ज़्यादा ने तो साढ़े काम ने, यह सिस्टम भी खत्म हो गया। मैनू ये चीज़ा जिहड़ियां रिवायात हैं पुरानियां ना वो असी बेशक मसरूफ लाइफ है, डाढ़ी जिंदगी टफ हो गई है, लेकिन ये चीज़ा असी हुण भी कर सकते हैं। क्यों वेख लो एक पासे तो उतराए बिरा ने, उतराए बिरा की फैमिली है, उन्होंने अपना खाना पकाया तो अपनी रोटी पकाई, दूजे बिरा ने अपना खाना पकाया अपनी रोटी पकाई, तीनों फैमलियाँ आ गई एक ही दस्तरखान पर बह के खा के हो गई। यह होंगी है बरकत, यह होंगी है पहचान, यह होंगे इतफाक, यह होंगे रख रखाओ। ये ना बंदे का कबीले के रिश्तेदार एक भरम बनया रहा कि ये लोग चंगे ने। बहरहाल ये तो गल् हो गई ना तोड़िया मेरिया, तो हूँ एक गाना सुना भी है मैडम नूर जहां का, तो डेडिकेट करना उन्हें बहना तो मावां जिहड़ियां इस टाइम किचन दे विच मसरूफ ने, ते फरमैश है, भला कि फरमैश है, फरमैश है जनाब फरी आपे दी।

अस्सलाम वालेकुम एंड अस्सलाम वालेकुम मेरे सारे भैणां ते भरावां नूं, सारे यारां नूं, दिलदारां नूं ते बिछड़े मन ठारां नूं वेलकम बिस्मिल्ला जी आयां नूं पा खैर रागले ते प्रोग्राम दे विच बैठा तुहाडा अपना भरा जिहनूं आखदे ने गुलाम अली जावेद ते प्रोग्राम ने रावी किनारे चैनल ने FM 101 रेडियो पाकिस्तान ते तोड़ा मेरा साथ ने हर इतवार दे दिहाड़े दोपहरी 1 बजे तो लग के 3 बजे तक प्रोग्राम दे विच गल्लां ही ने यारां दियां दिलदारां दियां ते मिठड़े मन ठारां दियां लो जी दूजे घंटे दे विच एक सोहना टॉपिक हुंदा उस ते तुसीं सांझ पैंदे हो अज दा जिहड़ा टॉपिक है कि जदों इंसान परेशान हाल होवे दुख च होवे ते क्या उस टाइम वो अपने नूं भुल जांदा है या अपने ज़्यादा याद आउंदे ने मुश्किलात दे विच दुखां दे विच जिहड़े अपने लोग हुंदे ने उह ज़्यादा याद आउंदे ने या भुल जांदे ने ये साडा अज दा टॉपिक है ते मैनूं कॉल कीती आ उस्ताद जीरे ने प्रोग्राम सुणदे पए ने प्रोग्राम दे विच वज गज के शामिल होए ने सलाम आखे ने शहजाद भाई नूं और सारे जिहड़े FM 101 दे लिसनर ने उन्हां नूं रुबीना जट्टी साहब प्रोग्राम दे विच शामिल होईआं उन्हां आख्या सारिआं नूं दुआ दिओ सारे पाकिस्तान वालिआं वास्ते दुआ करो मेरे सलाम दिओ सारिआं नूं ते खास करके रजा भाई नूं ते शमी मापी नूं शहजाद भाई प्रोग्राम दे विच शामिल होए शहजाद भाई वेलकम बिस्मिल्ला ते जी आया नू इरम साडे प्रोग्राम दे विच शामिल होईआं ने इरम जी थैंक यू सो मच आखदे ने कॉल मिला मिला थकियां मिलदी नहीं मिल जैसी ना परेशान हो आखे ने रख फुल्लां ते पैर चला दिओ मैं आखे नहीं जी अपनी पसंद दा गीत तुहाडे नामे करदा बल्कि ऐ लो जनाब अगला गीत ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੁਣੋ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹੋ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਟਾਪਿਕ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ

0: be back after this short commercial break. Stay with us.
1: सेहत की बात साई लाइफ के साथ वर्ल्ड हार्ट डे की मुनासिबत से इस प्रोग्राम का मौजू होगा कोलेस्ट्रॉल और उसके बढ़ने की वजूहात। इस प्रोग्राम में हमारे मेहमान होंगे डॉक्टर शुएब मोहम्मद दानियाल, कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट, शालामार हॉस्पिटल, लाहौर। पीर 28 सितंबर 2026 शाम 5 बजे सिर्फ FM 101 लाहौर पर। यह प्रोग्राम आपके लिए साई लाइफ फार्मा के तआवुन से पेश किया जाएगा।
2: This is FM 101.

0: We'll be back after this short commercial break. Stay with us.
1: सेहत की बात साई लाइफ के साथ वर्ल्ड हार्ट डे की मुनासबत से इस प्रोग्राम का मौजू होगा कोलेस्ट्रॉल और उसके बढ़ने की वजूहात। इस प्रोग्राम में हमारे मेहमान होंगे डॉक्टर शुएब मोहम्मद दानियाल, कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट शालामार हॉस्पिटल लाहौर। पीर 28 सितंबर 2026 शाम 5 बजे सिर्फ FM 101 लाहौर पर। यह प्रोग्राम आपके लिए साई लाइफ फार्मा के तआवुन से पेश किया जाएगा।
2: There's music and then there's magic. One above FM 101.

0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: We will be back after this short commercial break. Stay with us.
2: सफर हज एक मुकद्दस सफर, और इस सफर में एक भरोसेमंद मुनज्जम जरूरी है। हज 2027 का एक्सक्लूसिव हज बैंकिंग पार्टनर HBL इस्लामिक मंजूर शुदा मुनज्जमीन के साथ मिलकर प्राइवेट हज की वसूलियों और बैंकिंग को आसान बना रहा है। और इस मुबारक सफर के लिए सऊदी रियाल बा आसानी खरीदें HBL करेंसी एक्सचेंज की मुल्क भर में मौजूद 70 से जायद आउटलेट्स के जरिए। HBL इस्लामिक, सफर हज में आपका खिदमत गुजार। शराइत ज़वाबित लागू हैं। सफर हज एक मुकद्दस सफर, और इस सफर में एक भरोसेमंद मुनज्जम जरूरी है। हज 2027 का एक्सक्लूसिव हज बैंकिंग पार्टनर HBL इस्लामिक मंजूर शुदा मुनज्जमीन के साथ मिलकर प्राइवेट हज की वसूलियों और बैंकिंग को आसान बना रहा है। और इस मुबारक सफर के लिए सऊदी रियाल बा आसानी खरीदें HBL करेंसी एक्सचेंज की मुल्क भर में मौजूद 70 से जायद आउटलेट्स के जरिए। HBL इस्लामिक, सफर हज में आपका खिदमत गुजार। शराइत ज़वाबित लागू हैं। सफर हज एक मुकद्दस सफर, और इस सफर में एक भरोसेमंद मुनज्जम जरूरी है। हज 2027 का एक्सक्लूसिव हज बैंकिंग पार्टनर HBL इस्लामिक मंजूर शुदा मुनज्जमीन के साथ मिलकर प्राइवेट हज की वसूलियों और बैंकिंग को आसान बना रहा है। और इस मुबारक सफर के लिए सऊदी रियाल बा आसानी खरीदें HBL करेंसी एक्सचेंज की मुल्क भर में मौजूद 70 से जायद आउटलेट्स के जरिए। HBL इस्लामिक, सफर हज में आपका खिदमत गुजार। शराइत ज़वाबित लागू हैं।
3: There's music, and then there's magic. One above FM 101.

0: there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.
1: We will be back after this short commercial break. Stay with us.
2: सेहत की बात साई लाइफ के साथ वर्ल्ड हार्ट डे की मुनासिबत से इस प्रोग्राम का मौजू होगा कोलेस्ट्रॉल और उसके बढ़ने की वजूहात। इस प्रोग्राम में हमारे मेहमान होंगे डॉक्टर शुएब मोहम्मद दानियाल, कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट, शालामार हॉस्पिटल, लाहौर। पीर 28 सितंबर 2026 शाम 5 बजे सिर्फ FM 101 लाहौर पर। यह प्रोग्राम आपके लिए साई लाइफ फार्मा के तआवुन से पेश किया जाएगा।

0: और इस मुबारक सफर के लिए सऊदी रियाल बआसानी खरीदें HBL करेंसी एक्सचेंज की मुल्क भर में मौजूद 70 से ज्यादा आउटलेट्स के जरिए। HBL इस्लामिक, सफर हज में आपका खिदमत गुजार। शराइत ज़वाबित लागू है।
1: There's music and then there's magic. One above FM 101.

0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: सफर हज एक मुकद्दस सफर, इन सफर विच एक भरोसेमंद मुलाजम जरूरी है। हज 2027 दा एक्सक्लूसिव हज बैंकिंग पार्टनर HBL इस्लामिक मंजूर खुदा मुलाजमीन दे नाल मिलके प्राइवेट हज दी वसूलियां अते बैंकिंग को आसान बनेदा पए। ई मुबारक सफर कीते सऊदी रियाल बा आसानी खरीदो। HBL करंसी एक्सचेंज दिया मुल्क भर च मौजूद 70 तो जायद आउटलेट्स दे जरिए HBL इस्लामिक सफर हज आप दा खिदमत गुजार, शरायतो जवाबत लागू।
2: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
3: दिस इज FM 101।
4: सफर हज एक मुकद्दस सफर और इस सफर में एक भरोसेमंद मुनज्जम जरूरी है। हज 2027 का एक्सक्लूसिव हज बैंकिंग पार्टनर HBL इस्लामिक मंजूर शुदा मुनज्जमीन के साथ मिलकर प्राइवेट हज की वसूलियों और बैंकिंग को आसान बना रहा है। और इस मुबारक सफर के लिए सऊदी रियाल बा आसानी खरीदें HBL करेंसी एक्सचेंज की मुल्क भर में मौजूद 70 से जायद आउटलेट्स के जरिए। HBL इस्लामिक सफर हज में आपका खिदमत गुजार, शराइत जवाबित लागू है।
3: दिस इज FM 101।
0: सुनते रहे।

जनाब, वेलकम बैक राइट आफ्टर अ वेरी ब्यूटीफुल ट्रैक. और आप सुन रहे थे हमारे साथ हीर इज अ ट्रैक बाय अली रजा. और बात हो रही है जनाब लिसनर्स के साथ भी, और जो हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं उनके साथ भी, लाइबा के साथ, और ईमान जो हैं वो भी हमारे स्टूडियोज़ में हमारे प्रोग्राम का हिस्सा हैं, हमारे संडे स्पेशल में प्रोग्राम का हिस्सा हैं. बच आप लोग जानते हैं इसको संडे स्पेशल क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है क्योंकि संडेज़ में हम बहुत सारे चेहरे जिनसे सिर्फ हमारी सलाम दुआ होती है, जिनसे हमारी सिर्फ बात होती है, जिनसे सिर्फ डेली में अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, क्या हाल है, ठीक ठाक, एंड दैट्स ऑल, सिर्फ इतनी ही मुलाकात होती है. लेकिन संडेज़ में स्पेशलिटी यही है कि आप उन चेहरों से घंटों बातें कर सकते हैं, देर तक उन्हें देख सकते हैं, उनसे हाल चाल पूछ सकते हैं, उनसे ज़िंदगी के बारे में, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है इस बारे में आप उनसे सवाल जवाब कर सकते हैं, पूछ सकते हैं. वेल जनाब, इसी तरह हम आपके साथ रابطے के आम तरीके भी शेयर करेंगे, क्योंकि हमारे जो रेगुलर लिसनर्स हैं वो तो जानते हैं कि प्रोग्राम में कैसे पार्टिसिपेट करना है, किस तरह से अपने इनपुट्स को शेयर करना है, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस जो 4471 पर मुझे मौसूल हो चुके हैं, बेशक वो हमारे रेगुलर लिसनर्स के हैं, लेकिन जो हमारे अपकमिंग लिसनर्स हैं, जो हमारे न्यू लिसनर्स हैं, वो भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं. तो जनाब आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपना मोबाइल फ़ोन उठाइए, उसके राइट मैसेज ऑप्शन या क्रिएट मैसेज ऑप्शन में जाके 101 कैपिटल ले लिखें, स्पेस दें, अपना छोटा खूबसूरत सा नाम ज़रूर लिखें, क्योंकि नाम इंसान की है शनाख्त, उसकी है पहचान. उसके बाद एक और स्पेस देकर अपने मैसेज को टाइप करें और भेज दें 4471 पर. इसके साथ साथ अगर आप फेसबुक पे कमेंट्स करना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, तो www.facebook.com/fm101 लाहौर का पेज है जनाब हाजिर खिदमत. और अगर आप करना

0: ऑलराइट जनाब, वेलकम बैक राइट आफ्टर अ ब्यूटीफुल ट्रैक. और आप सुन रहे थे ढोला साडी कदरां तो जान बाय फरीहा परवेज. और फरीहा परवेज को सभी सुनना पसंद करते हैं. और वैसे आप लोगों का फेवरेट लिसनर जो है सिंगर कौन है लाइबा? मूड के हिसाब से जनाब, आज की जनरेशन जो है ना वो मूड के हिसाब से चलती है. ईमान आपका है कोई फेवरेट कि आप मूड के हिसाब से?
1: हाँ, वैसे आसिम जो है ना वो हर जोन के गाने गा लेते हैं ना, इसलिए मुझे आसिम ज्यादा पसंद.
0: मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं आसिम. और
2: कामिंग वॉइस हो ना, जो भी हो चाहे जिस भी सिंगर, जो मजा है जिसकी रिदम प्यारी हो, जिसके लिरिक्स प्यारे हो. लिरिक्स बहुत डिपेंड करता है, मुझे लगता है लिरिक्स के ऊपर ना सारा सॉन्ग ही डिपेंड करता है. आप
1: बिल्कुल
2: exactly. मैं कहती हूँ कि अगर रिदम भी इतनी नहीं भी अच्छी ना,
0: लेकिन लिरिक्स अच्छे हैं तो फिर जो है ना दाल गल जाती है इंसान के. ऐसा ही है ना. और हमारे लिसनर्स भी जो है ना वो कुछ इस तरह से ही पसंद करते हैं कि जब
2: मैं वो रैप नहीं सुनती, रैप मुझे नहीं अच्छे लगते. लेकिन वो था ना, वो क्या था, तीन लड़कों ने जो गाया था, मुझे नाम भूल गया उसका.
0: तीन लड़कों ने जो गाया था तू है कहां. अच्छा ठीक है,
2: वो उसके लिरिक्स बहुत प्यारे थे. अच्छा, अच्छा
0: आपको गाना आता है? वो
1: लाइबा सिंगर है.
0: चले फिर जरा थोड़ा गा के तो सुनाए लाइबा, क्या था वो जो तीन लड़कों ने गाया था?
2: रैप नहीं था, वो गाती नहीं हूँ लेकिन. अच्छा?
1: गा दो कोई बात नहीं.
0: मेरा ख्याल है इनका मूड नहीं अलावा है ना.
1: वो सिंगर्स का होता है बहाना, को वैसे गाते रहेंगे, गुनगुनाते रहेंगे, कोई सुने ना सुने. लेकिन जब कहने ना यार सर गाना तो सुना.
0: ये ना मुझे ईमान आपकी बात बहुत अच्छी लगी.
3: बोला एक्चुअली ना बंदा
0: मूड भी होते हैं भाई. नहीं नहीं, मुझे पक्की सिंगर
3: नहीं नहीं, बंदा ना कॉन्शियस हो जाता है.
0: ओह माय गॉड, थोड़ा सा देखिए कॉन्फिडेंस जो होता है ना, वो ओवर कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात नहीं है, लेकिन कॉन्फिडेंस होना जो है वो बहुत अच्छी बात है कि आपको अपनी क्वालिटी के ऊपर एक एतमाद है. और आज का जो हमारा टॉपिक भी है ना, वो भी कुछ इस तरह से ही है कि आप अपने आप को किस तरह से पावरफुल बना सकते हैं एज अ पर्सनैलिटी वाइज. तो अगर आपकी पर्सनैलिटी में एक यूनिक क्वालिटी है कि यू आर अ गुड सिंगर, यू हैव अ गुड वोकल, सो व्हाई यू कैंट सिंग?
1: शी कैन.
3: चलिए थोड़ा सा गा देती हूं इसका. तू है
0: थोड़ा सा गा कुछ नहीं होता
3: कि जब मैं हद से आगे बढ़ गया था आशिकी में.

0: रह गया था शाख ही में, जैसे ख्वाब ही में ख्वाब गा है आग ही में, पल से पल में क्या हुआ तुम रह गए बस याद ही में, एक सवाल मचलता है मेरे दिल में कभी, तुझे मैं भूल जाऊँ या तुझे मैं याद करूँ, तुझी को सोच के लिखता हूँ जो भी लिखता हूँ, अब लिख रहा हूँ तो फिर क्यों ना एक सवाल करूँ, मैं इस सवाल से गम को बदल दूँ खुशियों में, पर इस सवाल
1: और इतना ज्यादा रैप याद रखना
0: मुझे काफी याद है, लेकिन काफी देर हो गई है ना अब ये गए हुए तो
1: अच्छा।
0: थोड़ा हो जाता है।
1: बाकी ईमान सच्ची इतनी सारी चीजों का जो आगे पीछे वर्ड्स होते हैं और छोटे छोटे चंक्स में जो सेंटेंसेस होते हैं ना,
0: अच्छा मुझे ना अपनी ये आदत अच्छी भी लगती है और बुरी भी लगती है, मुझे इंटरनेशनल की भी कोई भी चाहे जिस भी लैंग्वेज का हो ना, मुझे अगर अच्छा लगे ना तो मैं उसे याद कर लेती हूँ।
2: कोरियन सॉन्ग्स इंग्लिश तो चलो कोई इंग्लिश में भी चीपी पीपी हमें सुना रही होती है क्लास में
1: इतनी हाई क्वालिटी की ये सिंगर है। ओह माय गॉड,
0: मुझे ना ये आदत है कि मुझे कुछ भी अच्छा लगे ना तो मैं उसे अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेती हूं।
1: अबरार साहब सुन रहे हैं तो आपको मेरा ख्याल है वो सिंगर ही बना देंगे क्या?
2: नहीं नहीं,
0: मैं बाय प्रोफेशन नहीं बना जाती, बस वैसे ही शौक,
1: रेडियो के थ्रू बन रहे हैं कुछ
0: सिंगर। हां वो हो सकता है,
1: चलिए जनाब हम इस बारे में भी मजीद गुफ्तगू करेंगे अपने जो लिसनर्स हैं उनके साथ और प्रोग्राम में सब्जेक्ट को भी शामिल करेंगे, लेकिन मेरा दिल चाहता है कि एक आधा सॉन्ग जो है ना ज़रूर प्ले होना चाहिए प्रोग्राम में। सो जनाब मैं प्ले करने जा रही हूँ जेब बंगश की आवाज़ में बहुत ही अच्छा ट्रैक,
0: कौन सा?
1: बदला, a beautiful track, and this is also my favorite track. So you all people listen this beautiful track, I'll be right back, keep listening FM 101, this is your show.

0: जनाब, वेलकम बैक. और आप सुन रहे थे हमारे साथ जी बंगश का बहुत ही ज़बरदस्त सा और ज़बरदस्त ट्रैक था जनाब, बदला, अ ब्यूटीफुल ट्रैक. और अभी रिसेंटली मेरे ख्याल से वो आया, इस वजह से बहुत कम लोगों ने सुना है, लेकिन जितने भी लोगों ने सुना है उन्होंने पसंद किया है. सो हमारी जो दोस्त बैठे हुए हैं यहाँ पर, ईमान और लाइबा, वो भी पसंद करती हैं. एंड आई होप कि आप जी बंगश पसंद करती हैं.
1: उनकी बहुत प्यारी और यूनिक सी आवाज़ है.
0: यूनिक सी आवाज़ है, बिल्कुल अच्छा लगता है.
2: उनका वो जो एक ड्रामा था खई, उसका ओएसटी
1: क्या उन्होंने ओएसटी गाया
2: है. वो एक ड्रामा वैसे ही इतना वो था, मतलब एक सस्पेंस और खौफ वाला, और उनकी वॉइस से वो जो एक प्रॉपर डर का फील आता था, अमेजिंग.
1: उन्होंने बहुत अमेजिंग गाया,
0: जबरदस्त. ऐसी वॉइसेस वैसे बहुत कम होती हैं, सालों में, बरसों में पैदा होती हैं. सो जनाब, जब पाकिस्तान की बात की जाए ना, और पाकिस्तान से रिलेटेड कोई चीज़ हो, जैसे मौसम है, जैसे खूबसूरती है, जैसे हिल स्टेशंस हैं, जैसे लोग हैं, जैसे सिंगर्स हैं, और इन सब का अगर आप देखें जो लेजेंड्स हैं पाकिस्तान के, जैसे उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान हैं, मैडम मलिका तरन्नुम नूरजहाँ हैं, फरीदा खानम हैं, आतिफ असलम, बहुत सारे ऐसे जो पाकिस्तान के खूबसूरत खूबसूरत आवाजें हैं जिनको हम भुला नहीं सकते.
2: बिल्कुल.
0: तो हर एक आवाज की अपनी खूबसूरती, जैसे गुलदान में डिफरेंट फ्लावर्स होते हैं ना, उनकी अपनी अपनी खुशबू होती है.
1: पाकिस्तान में ना बहुत यूनिकनेस है उसके लोगों में, उसकी चीजों में,
0: बहुत रिचनेस है हर चीज में.
2: कल्चर इतना अच्छा है, मतलब मैं कहती हूँ डिफरेंट जो लैंग्वेजेस के भी, फोक म्यूजिक है जो हमारा, वो इतना खूबसूरत है.
0: अताउल्लाह ईसा खेलवी, जबरदस्त जनाब, अगर आप उनकी सुने ना, तो वो कहाँ, वो एक बड़ा अच्छा उन्होंने उनका ट्रैक है, मुझे अब जहन से निकल गया, लेकिन वो बहुत ज़्यादा फेमस भी हुआ था उनका.
2: जैसे मतलब कुछ बात, मतलब आपको वर्ड्स की समझ नहीं आ रही, फोक म्यूजिक है जैसे, कहीं सिंधी है, कोई बलोची सॉन्ग है, उनकी समझ नहीं आ रही, लेकिन वो एक वाइब आती है,
0: डेफिनेट आती है. बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास हम जब बैठते हैं ना और गुफ्तगू करते हैं, तो वो हमें ऑटोमेटिकली अच्छे लगते हैं. और कुछ लोग होते हैं जिनसे हम बात भी नहीं करते, और सलाम दुआ भी होती है, तुम कहते हैं कैसा अजीब सा, हम इस तरह की ना हरकतें, मतलब ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया.
1: लेकिन हम उनसे जैसे ही मिलते हैं तो हमें फील होता है कि हम गलत सोच रहे थे इनके बारे में,
0: है ना. लेकिन समटाइम ये होता है कि फिर हम सही भी होते हैं, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव दो चीज़ें चल रही होती हैं ना. देखिए, आप एक इंसान हैं और एक हमारा इन्वायरमेंट है. एक मैंने टॉपिक रखा था कि इंसान की जो खामियाँ होती हैं, क्या वो पैदाइशी होती हैं या फिर इंसान जो है वो सीखता है. तो ज़्यादातर जो एक मैसेज आया था, जो आंसर आया था, वो यही था कि इंसान जो है ना वो सीखता है. कोई भी इंसान बुरा नहीं होता,
1: खामी के साथ तो कोई भी
0: अल्लाह ने किसी को भी खामियों के साथ पैदा नहीं किया. अगर आप देखें, हद तो ये है कि इंसान अपनी तख्लीक में भी बेऐब है,
1: तो.
0: कोई भी बेऐब, जितने भी दुनिया में आते हैं लोग, वो बेऐब, मतलब कोई भी ऐबदार नहीं होता.
2: बिल्कुल.
0: तो अब अगर आप अपने किरदार से बुरे बन जाएं, माहौल से बुरे बन जाएं, किसी और सिचुएशंस के लिहाज से बुरे बन जाएं, तो दैट इज अप टू यू.
2: वो फिल्म्स भी होती है, उनमें भी दिखाया जाता है कि अगर कोई विलन भी है तो उसके बैक एंड पे कोई एक स्टोरी थी जिसने उसे विलन बनाया है. वो एक सोसाइटी है या फिर वो कोई एक चीज है जिसने उसे बुरा बनाया है. वो बुरा था नहीं, उसकी लाइफ में भी कुछ ऐसी चीज आई है जिसने उसे विलन बना दिया.
0: क्या बात है इमान, मुझे लगता है आपका एक्सपीरियंस बड़ा है कुछ इस तरह से, है ना.
2: मूवीज देख जो बहुत एक्सपीरियंस.
0: अच्छा, आपका हॉबी है कि आप मूवीज को ज्यादा पसंद करती हैं?
1: एंटरटेनमेंट के हवाले से इसका बहुत ज्यादा,
2: मैं, मुझे बहुत पसंद है. किसी भी जॉनरा की मूवियों में बड़े मजे से देखती हूँ, और ज्यादातर ये जो सस्पेंस, मर्डर मिस्ट्रीज,
0: अरे मारधाड़ कितनी लेकिन हाँ, वही बात आ जाती है कि आप किसी चीज को किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते
1: हैं.
0: बिल्कुल, हम उसी हवाले से बात करेंगे आज. और मेरा जो टॉपिक है, लिसनर्स के साथ आप भी सुन लें, कि हाउ कैन अ पर्सन बिल्ड एन एक्सट्रीमली पावरफुल ऑरा. पहले तो हमें ये पता चले कि ऑरा होता क्या है, और हम किस तरह से इसे बिल्ड कर सकते हैं, या ये बिल्ड इन होता है, हमने इसे पावरफुल बनाना होता है, या किस तरह, या क्या करना होता है, साइकोलॉजी इसके बारे में क्या कहती है, और हम इसे किस तरह से प्रिसीव करते हैं. सो डिफरेंट चीज़ें होती हैं, डिफरेंट थिंग्स होती हैं, वेरिएशंस इज ऑल अबाउट, लाइफ इज ऑल अबाउट अनसर्टेनिटी. क्या हो जाना है, किस वक्त होना है, कब होना है, किसी को नहीं पता. सो इसीलिए खुश रहें और खुशियाँ बांटते रहें जनाब. लाइफ के कोई यू टर्न नहीं है, सीधी जाती है बिल्कुल ना किसी पे. सो इसी के साथ नेक्स्ट डे की जानी बढ़ते हैं, और उसके बाद हम वापस आएंगे, आपसे मजीद गुफ्तगू करेंगे, मजीद बात करेंगे. 111-111 इज द नंबर यू पीपल हैव टू डायल. और जनाब 4471 पे आप कर रहे हैं हमें मैसेज, और फेसबुक का जो पेज है वो थोड़ा सा गड़बड़ेशन कर रहा है, लेकिन मेरी कोशिश है कि ये टेक्नीशियंस जो हैं वो इस मसले को जल्दी जल्दी हल कर दें, ताकि हम इसके ऊपर भी काम कर सकें. ऑलराइट जी, और ट्रैक अगर आपका कोई फेवरेट ट्रैक है तो वो भी आप बता सकते हैं और ऑन एयर करवा सकते हैं. लाइबा आप भी और ईमान आप भी, और मैं अपने लिसनर्स को कहूँगी कि वो भी पार्टिसिपेट करें और बता दें कि कौन सा ट्रैक ज़्यादा अच्छा है, या मैं अपनी मर्जी से कोई चला दूँ, क्या ख्याल है? और आप इन नेक्स्ट टर्न सोच के रखें, इस ट्रैक के बाद आपने अपनी फेवरेट ट्रैक बताएं. ठीक है जी, ओके, टिल देन आप इस ट्रैक को सुने और इसके बाद हम वापस पलटते हैं.
3: एक घंटा एक मिनट भी नहीं.
4: क्या कह रही थी तुम, एक बार फिर बोलो.
3: नहीं रह सकती ना मैं तुम्हारे बगैर. एक दिन एक घंटा

0: This is FM 101.
1: There's music, and then there's magic. One Above, FM 101.
2: सफर हज एक मुकद्दस सफर, और इस सफर में एक भरोसेमंद मुनज्जम जरूरी है। हज 2027 का एक्सक्लूसिव हज बैंकिंग पार्टनर HBL इस्लामिक मंजूर शुदा मुनज्जमीन के साथ मिलकर प्राइवेट हज की वसूलियों और बैंकिंग को आसान बना रहा है, और इस मुबारक सफर के लिए सऊदी रियाल बा आसानी खरीदें HBL करेंसी एक्सचेंज की मुल्क भर में मौजूद 70 से ज्यादा आउटलेट्स के जरिए। HBL इस्लामिक, सफर हज में आपका खिदमत गुजार। शराइत ज़वाबित लागू है।
3: सफर हज एक मुकद्दस सफर, इन सफर विच एक भरोसेमंद मुनज्जम जरूरी है। हज 2027 दा एक्सक्लूसिव हज बैंकिंग पार्टनर HBL इस्लामिक मंजूर खुदा मुनज्जमीन दे नाल मिलके प्राइवेट हज दी वसूलियां अते बैंकिंग को आसान बनेदा पे। इन मुबारक सफर कीते सऊदी रियाल बा आसानी खरीदो HBL करंसी एक्सचेंज दियां मुल्क भर मौजूद 70 तो ज्यादा आउटलेट्स दे जरिए। HBL इस्लामिक, सफर हज आप दा खिदमत गुजार। शराइत जवाबित लागू।
0: This is FM 101.

0: ऑलराइट जनाब, वेलकम बैक. और जनाब, आप सुन रहे थे बहुत ही खूबसूरत सा ट्रैक हमारे साथ, बहुत ही मेलोडियस सा ट्रैक. और इसके साथ साथ बात हो रही है इंसान के पावरफुल होने की, इंसान के पर्सनली अपने आप को कैसे इंसान स्टेबल बना सकता है, कैसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी जो है वो बना सकते हैं. हम ऑरा के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं और ईमान हमारे साथ हैं. वेल जनाब, ऑरा कहते हैं एक इनविजिबल एनर्जी को, इंसानी जिस्म के इर्द गिर्द पाया जाने वाला एक ऐसा हाला, एक गैर मामूली तवानाई जिसे आप बोल सकते हैं, एनर्जी बोल सकते हैं, एक मकनातीसी ताकत बोल सकते हैं उसको. ऑरा बेसिकली ये होता है, ठीक है. और अगर आप इसके महफूम में जाना चाहते हैं, अगर मज़ीद इसको थोड़ा सा कंसेप्चुअल को क्लियर करना चाहते हैं, तो इंसान के जो इमोशंस होते हैं, जो उसकी मेंटल हालत होती है, जो ज़हनी हालत होती है उसकी, और उसकी रूहानी जो ताकत होती है, उसकी अक्कासी कर रहा होता है ये ऑरा, जो इंसान की पर्सनैलिटी के साथ साथ चलता है. जैसे जैसे इंसान की सांस चल रही है, इंसान चल रहा है, कदम चल रहे हैं, वैसे वैसे ये एनर्जी भी उसके साथ चलती है. कहते हैं ना कि जब इंसान आया है, कुछ लोग होते हैं जिनको देखते ही आप ऐसे हक्का बक्का रह जाते हैं और आप समझते हैं कि यार ये कैसा बंदा था, ये तो कुछ बोल के भी नहीं गया, कोई सलाम दुआ भी नहीं इसने की, लेकिन इसकी क्या पर्सनैलिटी थी. हाँ, अब इम्प्रेशन छोड़ जाते हैं बेसिकली, ऐसा ही है. और कुछ लोग होते हैं जो आते हैं, सलाम दुआ करते हैं, बोलते हैं, बात करते हैं, और हम उनको ऐसे ही है जैसे नज़रअंदाज कर देते हैं, ठीक है आया बोल के तो चला गया. हमारे लिए वो इम्पॉर्टेंट नहीं होते वैसे, लेकिन जैसे कोई एकदम ऐसे दरवाज़ा खोलता है, आपको ऐसे एक दफ़ा व्यू किया उसने, अपनी आँखों आँखों से ही वो आपको पढ़ लेता है. ऐसा होता है ना. और फिर एक कुछ लोग होते हैं वो बकायदा अंदर आके पूरा विजिट करके जाके, अच्छा जाए वो जो है ना, क्या कहते हैं उसको, जायजा लेके तो वो करके जाते हैं, लेकिन वो हमारे लिए ऐसे ठीक है, इट्स ओके,
1: कोई आया था चले गया,
0: चला गया. दैट इज बेसिकली ऑरा. ये ऑरा होता है जो उसको पावरफुल बनाते हैं, ये ऑरा होता है जो आपके बोलने पे आपको बताते हैं. अब जैसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने आज माविश को नहीं देखा,
1: बिल्कुल,
0: लेकिन वो फील कर सकते हैं
1: आपकी आवाज से, आपकी आवाज का ऑरा.
0: हाँ एग्जैक्टली. यार आप बिल्कुल सही हो ईमान. जैसे बहुत सारे लोगों ने ईमान को नहीं देखा, लेकिन वो ईमान के ऑरा से अपने ऑरा को मैच करके बोल सकते हैं कि ईमान आया एक अच्छी है, ईमान की पर्सनैलिटी कैसी होगी, ईमान स्कार्फ लेती होगी, ईमान जीन्स पहनती होगी, ईमान गाउन लेती होगी, ईमान कैसी होगी. लोगों को नहीं पता ईमान हाई हील्स पहनती होगी या ईमान फ्लैट पहनती होगी.
1: ईमान ने जॉगर्स पहने हैं,
0: जॉगर्स पहने हैं, स्केचेस ज़बरदस्त. और बिल्कुल ऐसे ही रहनी, रूहानी इल्म को भी हम ऑरा कह सकते हैं. आपकी एक ऐसी एनर्जी जो के लोगों को नज़र नहीं आती, ठीक है ना लाइबा. सो जनाब, और इसी के साथ हम ऑरा की बात कर रहे थे, और अभी हम यही बात कर रहे थे कि किसी इंसान की जो पर्सनैलिटी है उसको हम कैसे जज कर सकते हैं, एक ऑरा के थ्रू और एक एनर्जी के थ्रू हम उसको बता सकते हैं. तो आज हमने इसी चीज़ें, इन्हीं चीज़ों को डिस्कस करना है, और 7-8 ऐसे पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं जिनको साइकोलॉजी जो है ना, डार्क साइकोलॉजी जो है वो उनके स्मार्ट रूल्स को बताती है. तो इसमें पहला रूल ये है कि आप जो है ना फौरन से रिप्लाई ना करें. कुछ लोग होते हैं ना सवाल पूछने में कहते हैं, हाँ ये मुझे पता है, ये मैं बता सकता हूँ, इसका मतलब ये है, ये है, ये है, ये है, ये है. और देखने में लगता है यार ये बंदा कितना इंटेलिजेंट है, इसको तो पहले ही पता है. अब फॉर एग्जांपल मैं किसी भी चीज़ का नाम लूंगी, ये किसका एब्रीवेट है, एंड व्हाट इज दैट स्टैंड्स फॉर, पी यू स्टैंड्स फॉर, आप ईमान फौरन कहेंगे पी यू स्टैंड्स फॉर पंजाब यूनिवर्सिटी, ऐसे ही है ना, फलानी यही फलानी है, मतलब कोई भी सवाल है और फौरन जो बोल देता है, हम कहते हैं बहुत इंटेलिजेंट है. जैसे इसकी एग्जांपल मैं इस तरह से दूंगी, हम मल्टीटास्किंग को कहते हैं ये जीनियस बंदा है,
1: बिल्कुल
0: है ना. ये एक टाइम में जी खातून हांडी भी पका लेती है, बच्चों को भी पढ़ा लेती है, रोटियां भी पका लेती है, बड़ों को खाना भी दे लेती है, नमाज भी पढ़ लेती है, आ भी जाती है, चली भी जाती है, मतलब ये इतनी ज्यादा मल्टीटास्किंग है, वेरी गुड, क्या बात है. देखने में हम ये कहते हैं, लेकिन साइंस इसे नेगेटिव मानती है. Why?
1: अच्छा,
0: अब आप कहेंगे हैं ये मैं भी आज मैं भी कैसी बातें करी हूँ, क्योंकि मल्टीटास्किंग से आपका ब्रेन थक जाता है.
1: ये तो सही
2: वो
1: बात
2: है. ऐसा होता है ना कि वो एक्सरसाइज हो रही होती है उसकी ब्रेन की, क्योंकि हम उसको जितने काम देंगे वो उतना ज्यादा प्रॉपरली फंक्शन करेगा. और लेकिन अगर हम उसे एक ही काम देंगे तो वो उसी काम को लेके वो प्रोसेस करेगा. लेकिन जब उसको बाकी जो काम होंगे उसके हवाले से इतनी कोई इन्फॉर्मेशन या उसका कोई प्रोसेस इतना वैसे का नहीं होगा जैसे कि वो मल्टीटास्किंग में हो सकता है उसका.
0: मल्टीटास्किंग जब भी हम करेंगे हम थक जाएंगे.
1: ये तो
0: क्यों
1: है.
0: हमारा ब्रेन थक जाएगा. मोनोटास्किंग नहीं करता कोई. अगर हम सिर्फ हंडिया, अगर हम सिर्फ हंडिया पका रहे हैं तो हंडिया पकाएं, अगर हम खाना खा रहे हैं तो हम मोबाइल ना देखें, क्योंकि उनकी चीजें डिफरेंट, उनके ऑरास डिफरेंट है. हर चीज का ऑरा है, हर खाने का, हर फ्रूट का, हर वेजिटेबल
1: का, एक्सपर्ट ऑफ नन
0: है ना.
2: ये गलत बात है, जब भी ये सुनती हूँ ना मुझे ये होता है कि ये पूरी नहीं बताते, ये पूरा कोट नहीं बताते.
0: ओके,
2: जैक ऑफ ऑल इज अ मास्टर ऑफ नन बट स्टिल बेटर देन मास्टर ऑफ वन.
3: बट
2: ये पूरा कोट है,
1: ये मैंने पूरा कोट है. सोसाइटी को जितना चाहिए वो उतना लेगी,
3: है ना. ये भी सही है, क्योंकि हमें जो चीज अच्छी लगती है हम उठा लेते हैं.
2: मैंने अपनी टांग हर काम में अड़ाई होती है.
1: ये तो मैं कहती हूँ बहुत ही ज्यादा वो है मल्टीटास्कर.
3: लेकिन मल्टीटास्किंग बहुत जल्दी थक जाते हैं. उन्होंने बोझ नहीं उठाया होता.
2: मुझे नहीं लगता.
3: अभी आप शायद आपका एज फैक्टर वो नहीं है. अगर यही 30+ 40+ में चले जाए ना, आप तो लोग कहते हैं मेरी तो हिम्मत
2: नहीं. मल्टीटास्किंग इस वजह से करती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है. जो काम मुझे अच्छा लगता है मैं सिर्फ वो करती हूँ.
1: ये बात है.
2: और जो चीज नहीं अच्छी लगती वो चाहे मुझे कोई 100 दफा कहते मैं नहीं करूंगी. बट और यही होता है ना कि आपका जिस चीज में दिल लग रहा है आपको मजा आता है वो चीज करने में. जैसे अब मुझे ना क्रोशिया मुझे बहुत अच्छा लगता है करना. मुझे बहुत अच्छा लगता है. इवन कि
3: मुश्किल आपको चीज इतनी अच्छी लगती है.
1: इसको हर मुश्किल काम पसंद है. सिंगिंग, क्रोशिया,
2: सिलाई. मुझे सगाई भी आती है, क्रोशिया भी आता है, कढ़ाई भी आती है.
3: क्या बात है जनाब, सिंगर होने के साथ साथ ये बड़ी चीज स्टिचिंग भी करती
1: है. मुझे एक मीम याद आ रही है.
3: करानी चाहिए ईमान इनसे. मुफ्त करानी चाहिए.
1: बड़ा मैंने कहा है देखे मल्टीटास्कर है, लेकिन मैं कहूंगी ना कुछ ऐसा है यार अभी ऐसे नहीं है. मल्टीटास्कर भी सिर्फ चाहत वाली मल्टीटास्कर है.
2: मैं वही कहती ना जिसका मेरा दिल करता है,
3: मुनाफकत वाली
2: मल्टीटास्कर. मेरा जिसका मेरा चीज में दिल करता है ना मैं सिर्फ वो चीज करती हूं. और मुझे क्रोशिया मुझे इतना अच्छा लगता है कि मैं कल बैठी हुई थी, सुबह की बैठी हुई तो मुझे पता नहीं चला रात हो गई है. मेरे हाथ दुख रहे थे, लेकिन वो फिर भी वो इतनी जैसे एडिक्शन होती है ना, वो चीज की जब एडिक्शन हो जाती है ना तो वो पता नहीं चलता.
3: जैसे बच्चे गेम्स खेल रहे हो कंप्यूटर पे किसी पे, तो उन्हें पता नहीं चलता दिन के 7 बजे हैं, सुबह के सही के 7 बजे हैं, या फिर शाम के 7 बज गए हैं.
2: फ्री टाइम होता है ना, फ्री टाइम होता है तो हर एक जन जी का यही होता है कि मोबाइल यूज करना है, स्क्रॉलिंग और वो मूवीज वगैरह.
3: और मैं कहती हूँ जो डूम स्क्रॉलिंग है ये तो बहुत ही बुरी बात है, बहुत बुरी बात है. ये फोन हाथ में होना ही बुरी बात है.
1: कसम से वो मैं देख रही थी कि अब पहले होता था लोग सुबह उठ के पहले टाइम देखते, टाइम के अब सब देखते हैं किसका मैसेज है, क्या मैसेज आया है.
3: बेसिकली वो मॉर्निंग आपकी नहीं होती. जिस वक्त आप किसी का मैसेज देख के गुड मॉर्निंग कर रहे हो या कोई भी रील आप देख रहे हो, दैट इज नॉट बेसिकली योर गुड मॉर्निंग, दैट इज अदर थिंग. आप दूसरे की सोच लेकर उठ रहे हैं, आपकी तो सोच भी फिर अपनी नहीं है. वेल इसी के साथ हम चलेंगे क्योंकि आपने कहा था कि जी अल्फाज इज अ ट्रैक और ज़ैन ज़ोहेब का जो ट्रैक है वो बहुत पसंद है, तो मैं उसी को ही ऑन एयर करने जा रही हूँ. और लाइबा ईमान में और हमारे सारे जितने लिसनर्स हैं वो जनाब सुनेंगे इस खूबसूरत से ट्रैक को, क्योंकि मुझे खुद भी बहुत पसंद है और आप भी सुनेंगे इस ट्रैक को हमारे साथ. सो कीप लिसनिंग एफएम 101, दिस इज योर रेडियो स्टेशन, स्टे ट्यून्ड.

0: there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.
1: This is FM 101.
2: Shukriya, aapne FM 101 tune kiya.
3: जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने एफ एम 101 ट्यून इन किया. एंड दिस इज़ आरजे माफिश सेदी. जनाब, हम बात करें ऑरास के हवाले से और जो पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं उन हवाले से बात हो रही है. और इसके साथ साथ अगर डालअप की जानिब देखा जाए तो पाकिस्तान के स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक हुआ चाहता है 6:56, यानी 7 बजे जाना है हमें ताज़ा तरीन सूरत हाल जानने के लिए न्यूज़ बुलेटिन की जानिब, जो हर घंटे बाद हम जाते हैं जनाब. और क्योंकि ताज़ा तरीन सूरत हाल जानने के लिए न्यूज़ बुलेटिन जाते हैं और वहाँ पर जो खबरें हैं उनसे बाखबर रहते हैं, क्योंकि आपके सराउंडिंग्स में जो भी हो रहा होता है से आपको बाखबर रहना होता है और होना भी चाहिए. वेल, इसी के साथ साथ बताती चलूँ, अगर किसी ने अपना डायल अप ठीक करना है तो 6:56 हुए हैं पाकिस्तान के स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक. अपना डायल अप आप ठीक कर सकते हैं और हम चलेंगे एक ट्रैक की जानेब और उसके बाद हम वापस आएंगे न्यूज़ के बाद. और हाँ हाँ, एक और बात बताती चलूँ, सॉरी टू कट यू. बिल्कुल, ज़माने याद आए. वेल जनाब, एक कमर्शियल प्रोग्राम है जो हमारे प्रोग्राम का हिस्सा है और जैसा कि आप सारे लिसनर्स जानते हैं कि हम कमर्शियल्स को जो है इग्नोर नहीं कर सकते, वो हमारे प्रोग्राम का अहम हिस्सा होते हैं, जैसे न्यूज़ बुलेटिन की जानिब जाना. और उसके बाद क्योंकि वो है तकरीबन 15 मिनट का प्रोग्राम, तो आपने ये नहीं समझना कि आरजे माफिश जैदी कहीं गुम गई हैं, कहीं खो गई हैं. नहीं, ऐसा नहीं है. उस कमर्शियल प्रोग्राम के बाद मैं वापस आ जाऊंगी आपके पास हाजिर खिदमत और आपसे करूंगी गुफ्तगू, बहुत सारी बातें. तब तक आप इस ट्रैक को इन्जॉय करें और उसके बाद हम चलेंगे ताज़ा तरीन सूरत हाल जानने के लिए न्यूज़ बुलेटिन की जानिब. सो स्टे ट्यून्ड विद अस ऑन FM 101.

ऑलराइट जनाब, वेलकम बैक। और आप हमारे साथ प्रोग्राम एंजॉय करें। और वक्त रुखसत जो है वो करीब आ पहुंचा है। 7:53 हो चुके हैं मेरे डायल अप पर। 8 बजे तक आपका मेरा साथ है संडे स्पेशल में। और बहुत सारे लिसनर्स जिन्होंने पार्टिसिपेट किया उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और ख़ास तौर पे जिन्होंने सब्जेक्ट के हवाले से पार्टिसिपेट किया उनका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। और बात हो रही है जी एक्सट्रीमली पावरफुल ऑरा के हवाले से, कि ऑरा बेसिकली क्या होता है ये भी मैंने बता दिया, ये किस किस कलर्स की होती हैं। हाँ, इस हवाले से मैं पहले प्रोग्राम कर चुकी हूँ, लेकिन इंशाल्लाह आगे भी बशर्ते ज़िंदगी ज़रूर प्रोग्राम करूँगी। इस हवाले से ज़रूर हम बात करेंगे कि कलरफुल ऑरास जो हैं वो क्या होते हैं। जनाब बात हो रही है अभी, और हमने आपसे बात की है कि ज़रूरत से जितनी ज़रूरत है उससे कम बोलना चाहिए। जो हर वक्त भी बोलते रहते हैं उनकी बात की वैल्यू जो है वो बहुत कम हो जाती है। और जो वो कहते हैं ना, हर वक्त की दस्तयाबी जो है वो इंसान को कहीं का नहीं रहने देती। सो अक्लमंद बंदा जो होता है ना, सिर्फ तब बात करता है जब उसके पास कोई ठोस बात हो करने के लिए, उसके पास कोई वैल्यूड बात हो करने के लिए, कोई नॉलेजेबल बात हो, कोई ऐसी बात जो लोग ना जानते हो या उस दायरे में बैठे, उस सर्कल में बैठे लोगों को ना मालूम हो, वो उनके लिए न्यू इन्फॉर्मेशन हो। सो लोग आपको गौर से सुनेंगे। और दूसरों को जल्दी वैलिडेट ना करें। वैलिडेट मीन्स टू से कि हम इंसानों की फितरी आदत होती है कि दूसरों से दाद तलब करते हैं, दूसरों से हम तवज्जो तलब करते हैं, क्योंकि हमें खुश रहना होता है ना। तो खुश रहने के लिए हम कोशिश करते हैं हम दूसरों से अटेंशन ले लें, और उनकी अटेंशन मिल जाती है तो बहुत खुश हो जाते हैं। किसी ने हमें थोड़ा सा भी अगर एक्सट्रीमली थोड़ा सा हमारी तारीफ़ कर दी है, प्रेज़ कर दिया हमें, और ज़रूरत से ज़्यादा अगर हमें बढ़ा चढ़ा के पेश किया है, तो हमारी फितरती आदत होती है कि हमें वो बंदा अच्छा लगता है और हम उस बंदे की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं, मुस्कुरा कर उससे मिलते हैं जब भी मिलते हैं। लेकिन पर्सनैलिटी या डार्क साइकोलॉजी हमें ये बताती है कि फ़ौरन से दाद मिलने के बाद आपको बहुत अच्छा बनने की, बहुत ज़्यादा मुस्कुरा कर बोलने की ज़रूरत नहीं है। ये नेगेटिव इम्पेक्ट डालते हैं आपकी पर्सनैलिटी पर। और अपनी जगह को ख़ुद बनाना चाहिए। जगह ख़ुद बनाने से मुराद है कि अगर आप किसी कुर्सी पे, सोफे पे, कहीं भी आपको बैठने की जगह मिले तो कॉन्फिडेंट होकर बैठे। ये नहीं आपने कंधे झुकाए हुए, आप बड़ा सिमट के बैठे हैं, जैसे आपको बहुत ज़्यादा मैनर्स हैं, आप बहुत सोफिस्टिकेटेड बंदे हैं, इस तरह से बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है। कॉन्फिडेंटली बैठे और ईजी होकर बैठे अपने आप में। ये नहीं कि आपने बहुत ज़्यादा परेशानी के आलम बहुत कन्फ्यूज बैठे हुए हैं। अच्छा, बहुत सारी जगह पर मैंने ये भी देखा है। और सबसे लास्ट वन ये है कि नेवर प्रिडिक्टेबल। कभी भी आप लोगों को अपने अगले स्टेप के बारे में मत बताएं, वरना वो आपसे पहले चाल चल जाएंगे। ये साइकोलॉजी में बताती है। सो रिएक्शन दें, लेकिन थोड़ा सा पॉज देकर। यहाँ पे जब आप फ़ौरन से रिएक्शन दे देंगे ना, फ़ौरन से, तो आपका ऑरा कमज़ोर पड़ जाएगा। वेल, बहुत सारी और भी चीज़ें जो हमने डिस्कस करनी है, लेकिन जो कि अब 7:56 हो गए, मेरे पास सिर्फ 2 मिनट रह गए हैं अल्लाह हाफिज़ कहने को। तो इसी दुआ और इसी उम्मीद के साथ कि आपकी हर सुबह होगी खुशगवार और हर खुशगवार सुबह का अंजाम बखैर होगा। आप जहाँ रहेंगे खुश रहेंगे, आबाद रहेंगे, अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे, क्योंकि ये ख्याल और एहसास जब आप रखते हैं ना, तो ये कह के नहीं रखवाया जाता, हमेशा ये दिल से अंदर से आपके डेवलप होता है, बिल्डन होता है। तो जब आप एहसास करते हैं तो यकीनन एहसास ही आगे से आपको भी मिलता है। कभी कभी ऐसा होता है कि लाइफ में चैलेंजेस आपको फ़ेस करने पड़ते हैं, लेकिन नॉट ऑल दैट वे, लेकिन चैलेंजेस भी आपको बहुत कुछ सिखाते हैं। सो जनाब खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। कल है मंडे, मंडे से ऑनवर्ड्स एक हैक्ट्रिक रूटीन है, एक बिज़ी रूटीन है। तो सैटरडे और संडे दो दिन ऐसे होते हैं जब आप जरा रिलैक्स कर सकते हैं, लेकिन संडे की स्पेशलिटी है कि ये स्पेशली इसीलिए कि आपके बहुत सारे ऐसे लोग जो जिनसे आप मुलाकात नहीं कर पाते, बात नहीं कर पाते, वो आप संडेज में उनसे बात कर लेते हैं। सो जनाब मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, खुश रहें और खुशियाँ बांटते रहें। मुझे दीजिए इजाज़त, टिल देन अल्लाह हाफिज़, साइनिंग आउट, आरजे महफिश सैदी, टाटा।

सा गया हूँ और चुप हो गया हूँ, मैं थक सा गया हूँ और चुप हो गया हूँ, मैं थक सा गया हूँ और चुप हो गया हूँ, मैं थक सा गया हूँ और चुप।

0: रात के 10 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। फातिमा तौसीफ से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। पाक बहरिया के बेड़े में शामिल की गई नई आबदोज PNSM हंगूर ने शिमाली बहरा अरब में पहली कामयाब लाइव वेपन फायरिंग की है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने गुज़श्ता 96 घंटों में बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में अब तक 71 से ज़ायद दहशतगर्दों को हलाक किया है। वज़ारत इत्तिलात ने नूरिस्तान में मुबज़ना तशद्दुद को
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, पन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर। द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। Tune in to the one above, FM 101.
2: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan.

Alright, assalamualaikum, assalamualaikum to all of you. Welcome to the station that is Sound of the Music. Aapka mezban hoon Mohammad Yusuf Alavilam from the federal capital city of Pakistan. Beautiful, beautiful, beautiful Islamabad, Lahore ka raas, Islamabad, Faisalabad, Quetta, Peshawar, Hyderabad, Sialkot, aur Multan, yani ki pura Pakistan aur Pakistan se bahir puri duniya mein radio.gov.pk par aap sun rahe hain. Shining Frequency FM 101 ki aur FM 101 ke Islamabad studio se main hoon aapke saath aapka mezban Mohammad Yusuf. Theek hai, aapke 12 baje tak aapke mera saath rahega is program mein. जिसका नाम है शब गप, और प्रोग्राम शब गप में हम बहुत सारे गपशप लगाएंगे आप लोगों के साथ, आप लोगों से लाइव इंटरेक्शन करेंगे, बहुत सारी बातें, बहुत सारा फन प्रोग्राम में. एक टॉपिक होगा जिस पर हम गपशप लगाएंगे आप लोगों के साथ. उम्मीद करता हूं कि तमाम सुनने वाले खैरियत से होंगे, जहां कहीं भी होंगे अल्लाह ताला के हिफ्ज़-ओ-अमान में होंगे. 27 सितंबर साल 2026 और इतवार की ये खूबसूरत शब आप लोगों के साथ बिताने के लिए मौजूद हैं. लाइव फ्रॉम द फेडरल कैपिटल सिटी ऑफ पाकिस्तान बिटवीन सिटी ऑफ रावलपिंडी एंड इस्लामाबाद. वजीराबाद से लेकर कश्मीर एंड बियॉन्ड इस्लामाबाद स्टेशन टेरिटरी और पूरे पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में जहां जहां तक हमारी आवाज सुनी जा रही है, सबको वेलकम. हमेशा की तरह पहला सॉन्ग, पहला गाना प्यारे वतन पाकिस्तान के नाम, जहां तक हो सके पाकिस्तान की तरक्की में अपना मजबूत किरदार अदा कीजिए. बी पाकिस्तानी, बाय पाकिस्तानी एंड प्राउड टू बी पाकिस्तानी.

पाकिस्तान हमारी जान, सबसे पहले पाकिस्तान। The Pride of Pakistan, Ustad Nusrat Fateh Ali Khan.

ओके, 10 बज के बाद से आते हैं 14 मिनट आपका मेरा साथ रहे किस प्रोग्राम में, ठीक रात के 12 बजे तक। टॉपिक आज बड़ा ही कोई इंटरेस्टिंग सा है, लेकिन थोड़ा सा आपने इसको सुनना है गौर से, और गौर से ऐसे सुनना है कि हमें बताना है कि इन केस अगर आप एक दिन के लिए किसी को दिखाई ना दें, इनविजिबल हो जाएं, तो सबसे पहले ही क्या करेंगे हम, क्या करेंगे हम आपको बाद में बताएंगे। आपका क्यों हाथ से निकल गया? जी टॉपिक है कि अगर आप एक दिन के लिए इनविजिबल हो जाएं, कि मसलन क्या आप किसी को दिखाई ना दें, तो सबसे पहले क्या करेंगे? चोरियां करोगे तो से? जी टॉपिक हमने आप लोगों से शेयर कर दिया है, आप लोगों की पार्टिसिपेशन थ्रू मैसेजेस अपने सेल फोन के क्रिएट मैसेज ऑप्शन में जाएंगे, 101 लिखेंगे, स्पेस देंगे अपना नाम पैगाम, उस मैसेज को आपने सेंड करना अपने जवाब के साथ 44 71 पर। facebook.com/fm101 चैनल पाकिस्तान हमारा ऑफिशियली पेज है, पेज पे जाके कॉमेंट्स कर सकते हैं, आप लोगों के कॉमेंट्स में शामिल करूंगा 11 बजे की न्यूज हेडलाइंस के फौरन बाद। और आखिरी मुमकिन जरिया है आपके हमारे रबते का कि आप कॉल कर सकते हैं 0511110101। क्या अगर आप एक दिन के लिए इनविजिबल हो जाएं, किसी को दिखाई ना दें, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे?

ऐसे भी कुछ मामलात होते हैं जिंदगी में के ईमान फ्रॉम इस्लामाबाद, वेलकम टू द शो भाई, एंड आपकी आवाज़ बहुत प्यारी है, थैंक यू सो मच जी, आपके कान बहुत अच्छे हैं। तो आपकी कदर किसी के दिल में इस बात से तय होती है कि वो आपको कितनी देर तक नाराज या गमगीन छोड़ता है। अगर आपकी अहमियत है तो वो कुछ भी करेगा मगर ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि आप दुख या गम में रहें। ओके जी, इनविजिबल अगर आप एक दिन के लिए हो जाएं, अगर दिखाई ना दें तो क्या करेंगे? सबसे पहले तो कुंडियां खराब करेंगे।

अगर मैं एक दिन के लिए इनविजिबल हो जाऊं तो मैं सारे बैंक से पैसे सारी गली पैसे हैं आगे इतने पैसे क्या करेंगे आप, क्या करेंगे?

कि अंधेरे में थे जब तलक जमाना साजगार था, अंधेरे में थे जब तलक जमाना साजगार था, चरा क्या जला दिया हवा ही और हो गई।

1051111001 और 9201103 हमारा कॉलिंग नंबर है, आप कॉल कर सकते हैं। अब से कुछ देर बाद आप लोगों के कॉल्स को मैं लाइव शामिल करूंगा प्रोग्राम में। अगर आप एक दिन के लिए इनविजिबल हो जाएं, अगर दिखाई ना दें किसी को, तो कौन सा ऐसा क्रिएटिव काम करेंगे? वो क्रिएटिव वे सोने वाला, घर पे रहने वाला, घर से जरा बाहर निकलें। आप तो निकलते हैं ना। अच्छा हाँ, मैं रात को फिर के शो में आपने बताया भी था जी। अच्छा, दोनों ही लग गई है।

0: मतलब कमाल, उसके कहने की देर थी। और सबसे पहले जो है वो इश्तियाक साहब जो है कॉल मिला रहे हैं, मतलब वो चंद ही नहीं कि कॉल मिस हो, है ना उस्ताद जी। हाँ जी उस्ताद जी, वैसे थोड़ी कॉल तो बंदा ना अपने आप ना गला कर लिया। हाँ जी उस्ताद जी, चले जी देखते हैं जी इश्तियाक साहब से ही गप लगाते हैं, और उनको क्योंकि वो बीमार हैं और उनकी कॉल शामिल करना ये किसी दवाई से कम नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, मैं तुसने दारफ, तुसनी आवाज, तुसने अल्फाज पहले ही शामिल कर दिते।
1: वो बड़ी मेहरबानी उस्ताद जी, ताए जड़ा टप के रखिया तुसा।
0: हां तुसा कर नजर ना उधर,
1: गल है के बेत कुदक बे ए वहां बे एक दिन का दे नजर ना है तो बे तो असे से ले आ रहा लोगों को।
0: अच्छा हां, ये भी है ना, आप वो दूसरे वाले
1: की वजह ये है, आपकी बात काट रहा हूं
0: जी। वो काट
1: रहा ये है कि मैं बीमार हूं, मैं चारपाई पर हूं, मैं बीमार हूं, मैं किसी को नजर ही नहीं आता जो आए वन वन के।
0: हां बिल्कुल
1: आपके।
0: हां जी, ये वन वन वालों का ही है।
1: जी, मैं तो रेडियो सुनता रहा था और बीमार हूं उस्ताद जी, पता है ना आपको, आपको पता है, याद नहीं
0: है? जी नहीं, याद है, और क्यों, एम्बुलेंस भेज दिए।
1: और आप कैसे हैं उस्ताद जी?
0: मैं दरमियाना सा।
1: अल्लाह ताला आपको सलामत। टॉपिक बहुत मुश्किल है।
0: क्यों मुश्किल है?
1: मैंने जवाब तो दे दिया है कि सवाए घर वालों के मैं किसी को नजर नहीं आता। अगर मैं
0: बर्दाश्त
1: वन वन पे नजर आता हूँ, क्योंकि मैं सुबह से लेकर रात के तक मैं कॉल करता हूँ और दिल बुलाता हूँ और आपसे बात करता हूँ तो खुश हो
0: जाता हूँ।
1: जब आपके जलवे में इकरार करते हैं तो आपके दर पर हाजिर हो जाते।
0: ओ थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखे, ज्यादा जोर लगा के बोलना नहीं, तबीयत आपकी
1: खराब है। उस्ताद जी गाड़ा कोई नहीं सुनाया थोड़ा
0: केड़ा
1: तो मेरी जिंदगी है उस्ताद जी, बड़ा सुने आप, मेरी जिंदगी है, खुदा की कसम मैं झूठ नहीं बोलता, आप मेरी जिंदगी है, आप मेरी जिंदगी, आप मेरे उस्ताद है।
0: अच्छा, जिन्हें नहीं पहले है ना तो उन्हें गोला मार देना मैनू।
1: ये गाना आप सुना दे, तू मेरी जिंदगी है,
0: तू मेरी जिंदगी है, बस ठीक है।
1: नहीं उस्ताद जी, सुनाना आपने। अच्छा। ये गाना सुनाना मुझे, ये रोजा किसकी आवाज है, जिसकी आवाज है ये गाना सुनाना, तू मेरी जिंदगी है, तू जी, मेरी हर खुशी।
0: जी थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया, आप गायब हो जाएं आप।
1: कोई गलती होगी उस्ताद जी तो माफ कर जो है, दो हाथ जोड़ के माफी जाना। एक साड़ी बेटी है जी, 101 जनाब कमांडर सदब रानी और इन्हें पूरी टीम
0: बात कर रही हूँ। मुजफ्फरगढ़ से थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया आपके टेक्स्ट मैसेज का। हेलो भाई, इमरान भाई का आ गया जी अब मैसेज, अब देखते हैं हमारे जो सीनियर प्रोड्यूसर साहब ने, उनके मुझे मैसेज आया मोबाइल पे। अच्छा मलिक इश्तियाक तेरी जिंदगी, ओए मैं कह रहा जिन्हें दी है उन्होंने कहना, अच्छा ठीक है।

जी अब जब तक ये सॉन्ग सुने मैं अपना गला जो है थोड़ा सा उसको मैं ठीक कर लूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मेरा गला अब बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होने शुरू हो गया। ये सॉन्ग स्पेशली मलिक इश्तियाक साहब के लिए है और उन्होंने कहा था कि मुझे ये वाला सॉन्ग सुनना है, तो ये ट्रिब्यूट है उस्ताद नुसरत अली खान साहब को। ये वो सिंगर है जिसने जाके पाकिस्तान से बाहर जो है बहुत ज़्यादा पाकिस्तान का नाम रोशन किया, और एक टाइम ये पाकिस्तान का बहुत ही मशहूर बैंड फ्यूजन जो है उसका हिस्सा रहे हैं, आई थिंक स्टिल अभी भी हैं, ये मैं कंफर्म कर लेता हूँ।

ये सारे सॉन्ग जो हैं मैंने आप लोगों के लिए लगाए हैं, बहुत अच्छे अच्छे ऐसे सॉन्ग। मैं चाहता हूँ एक अपनी पसंद का भी अगर आप लोग इजाजत दें तो मैं शामिल कर सकता हूँ। इसके शुरू में कहते हैं ना पता ना चला, तो पता नहीं क्यों अच्छा लगता है ये सॉन्ग। बहुत ही मीनिंगफुल इसके लिरिक्स। पता ना चला हम बदल गए, करें अब क्या इश्क में फिसल के, करें अब क्या इश्क में फिसल गए, तेरे दीदार से पहले। ये जो स्टूडियो है ना इसमें बहुत सारी आते हैं।

ओके जी, सानिया हर्षद मौजूद हैं और टॉपिक हवाले से कहते हैं तो मैं आपसे मिलने आऊंगी पिज्जा लेकर। वजह अब्दुल नूर हाशमी हमारे साथ मौजूद हैं, रवैस गार्डन लाहौर से। डियर यूसुफ भाई आदाब, लाहौर के तमाम बैंक खाली कर दूंगा और ये पैसा गरीबों में बांट दूंगा। अच्छा, लोगों के पैसे पे होने उत्ते कोई छाप देने बह के। सलाम भाई, कैसे हैं? फर्स्ट टाइम आपको सुन रही हूँ, कमाल का शो है, प्लेलिस्ट भी आउटस्टैंडिंग है। सलमा फ्रॉम पिशावर।

कि दिल ना अच्छा हो तो कुछ भी नहीं अच्छा लगता। अच्छा जी, दिल ना अच्छा हो तो कुछ भी नहीं अच्छा लगता। साया गैसुए दिलदार ना अच्छा मौसम।

खुशी का नसीब आप लोगों की पार्टिसिपेशन शामिल करेंगे 0511100101। जब भी लाइव आप बात करने के लिए आते, थोड़ा सा मुझे ना, मैं हमेशा इस चीज़ के बारे में बड़ा स्ट्रिक्ट रहा हूँ कि थोड़ा सा सीरियस हो के जब हम शुगर लगाएंगे तो फिर हम सही तरह से शुगर भी लगा लेंगे, लेकिन कम अज़ कम आप अच्छा नहीं लगता ना, कौन सी आपकी मेरी और सिर्फ आपस में गपशप हो रही है, पूरी दुनिया सुन रही होती है। मतलब एक बंदा जो 8 बजे से आया है, आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट भी अच्छी सी बनाई है, टॉपिक भी लेके आया हूँ, बात भी कर रहा हूँ, तो आप सिर्फ अपने बिस्तर से सिर बाहर निकाल के फ़ोन खड़का देते हैं और फिर ना किया करें, अच्छा नहीं लगता। क्योंकि शरारती बच्चों के लिए सजा का माकूल इंतजाम हमने रखा हुआ है, सीधा सीधा आहो समझ तो आप गए होंगे, नहीं तो जिन घर में सानू होंगे है। So, आप लोगों की मजीद पार्टिसिपेशन शामिल करते हैं जी 0511100101। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, थैंक यू सो मच। पहले सोच लो, मोहम्मद जियाउल खान फ्रॉम मियांवाली, अभी तो वो कह रहे हैं कि अभी तो वो फोर्थ हो गए, वरना मैं अपने अब्बू की आंखों से ओझल होना चाहूँगा, क्योंकि वो मुझे हर वक्त बहुत बात बात पे हंस पीते थे और कभी मुर्गा भी बना लेते थे, फिर आए हाय देखिए ना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो जिंदगी तक है, जब तक इंसान जिंदा होता है ना, फिर यही यादें हम कहते हैं कि कोई बात नहीं। मैं क्योंकि अब 2005 से मैं रेडियो जो है वो कर रहा हूँ, पहले प्रोडक्शन से रिलेटेड, फिर उसके बाद जब लाइव आने शुरू हुए उसके बाद से काफ़ी सारी रूटीन जो है बदल गई, लेकिन जब तक वालदा हयात थी तो जब तक आप घर ना पहुँच जाए ना, तो वो दरवाजे के बिल्कुल सामने ना एक चेयर होती थी, साथ एक स्टिक होती थी उनके हाथ में, चाहे रात के 3 बज रहे हैं फिर भी। रिमेम्बर के एक वॉइस नोट सुनाया था मैंने आपसे, कह रहा हूँ।

इसी वक्त हुआ जाता है सुकत 10:53 और आपका मेरा साथ रहेगा श्रीगाम में ठीक रात के 12 बजे तक। उनकी तारीफ में कहें क्या अल्फाज ही नहीं हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, तुसी अपनी तरतीब से देख लो पहले।

खैर तुम तो यहाँ खेल गए हो मुझसे, खैर तुम तो यहाँ खेल गए हो मुझसे, लेकिन महशर में अगर खुदा मेरी तरफ हुआ तो फिर

ओके जी, सॉन्ग भी सॉन्ग खत्म हो गया। मैं एक कमेंट मैसेज चोरी पढ़ रहा था और मैंने कहा चलें ठीक है जी, कोई बात नहीं जी, किसी भी चीज़ का मैं वो नहीं है, लेकिन देखिए आप भी सुन रहे हैं ना।

ये चीज होती है। चले जी वापस आएंगे न्यूज के बाद तो मजीद आप लोगों से गपशप लगाएंगे। इस वक्त वक्त हुआ चाहते हैं न्यूज ब्रेक का, वापस आते हैं न्यूज हेडलाइंस के बाद।

0: रात के 11 बजे हैं। अस्सलामु अलैकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। फातिमा तौसीफ से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। पाक बहरिया के बेड़े में शामिल की गई नई आबदोज PNS-M हंगूर ने शिमाली बहर अरब में पहली कामयाब लाई वेपन फायरिंग की है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने गुज़श्ता 96 घंटों में बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में अब तक 71 से ज़ायद दहशतगर्दों को हलाक किया है। वज़ारत इत्तला'आत ने नूरिस्तान में मुबज़ना तशद्दुद को पाकिस्तान के साथ जोड़ने के अफगान तालिबान हुकूमत के इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया है। जापान में 20वीं एशियाई खेलों में आज वॉलीबॉल के मुकाबले में पाकिस्तान ने काजिकिस्तान को 1 के मुकाबले में 3 सेट से हरा दिया।
1: This is FM 101.1.
2: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, पन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर। द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। To the one above, FM 101.
3: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

जी वेलकम करते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते साथ ही आप लोगों के सबसे पहले शामिल करेंगे फेसबुक के कमेंट्स जो हमें मौसूल हो रहे हैं facebook.com/FM101 चैनल पाकिस्तान के ऑफिशियली पेज पे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम भाई, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपके कमेंट का। और नाम लिख के भेजा करें जी अपना। जिमी हूँ यार, शिफा बासी हमारे साथ मौजूद हैं। हेलो भाई, वेलकम, थैंक यू सो मच। रेहाना खान बखर से हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं रेहाना खान बखर से, वेलकम टू द शो। नज़ीर खोसो हमारे साथ मौजूद हैं, सोहबतपुर बलोचिस्तान से ताल्लुक रखते हैं जी, थैंक यू सो मच। ज़िंदगी का असल मकसद कायनात का असल शऊर हासिल करके बेसहारा इंसानों की ज़िंदगी में हौसला पैदा करना और मुरझाए हुए चेहरों पर मुस्कुराहट लाना है। राजा अफजाल अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। सर जी क्या हाल है, कमरे में सुकून सो के? अच्छा जी। मोहम्मद हफीज रहमान बखर से हमारे साथ मौजूद है, थैंक यू सो मच। आरजे मोहम्मद आदिल सियाल हमारे साथ मौजूद है, डियर वेलकम टू द शो, थैंक यू सो मच। गुल यासीन नाज हमारे साथ मौजूद है। एम हफीज रहमान, फौजी असलम, एम इकबाल, मेहदी महबूब, रौनक चक, शी फैज मुल्तान, मलक वसीम अवान का खलूस प्यार और मोहब्बतों भरा सलाम हो। उस्मान जहाज हमारे साथ मौजूद हैं, आपके बेहतरीन दोस्त वो हैं जो आपकी आवाज़ से आपकी खुशी और गम का अंदाज़ा लगा सकते हैं। सर आपका टॉपिक अच्छा, मेरा आंसर है कि मैं अपने स्कूल फ्रेंड को मिलूंगी और मुल्क हालात से ही करने की कोशिश करूंगी जो अच्छा, अल्लाह खैर करेगा। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, अल्लाह ब्लेस यू, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया।

भाई सॉन्ग चला दें, शार्दुल खान का जी कौन सा सॉन्ग चला दें, उनके काफी सारे अच्छे सॉन्ग हैं भाई, एक बार फिर से वो सॉन्ग चला दें। या अल्लाह, चलड़े चलड़े बाल जी मोहम्मद ज़ियाउल्लाह खान मियांवाली से हमें कह रहे हैं। सलमा हमारे साथ मौजूद हैं जी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और कहते हैं कि अल्लाह आपकी अम्मी की मगफरत करे, जन्नत में जगह दे, आमीन। मेरे तो अम्मी अबू दोनों नहीं हैं जी, अल्लाह ताला उनको जवार रहमत में जगह दे। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपके टेक्स्ट मैसेज का, और बहुत बहुत शुक्रिया। अब्दुल नूर हाशमी हमारे साथ मौजूद हैं जी, थैंक यू सो मच। बड़ा शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो एक कतरा खून ना निकला। वाह जी वाह।

जी तुसी सुन दे पे हो, तो क्या वो सराइकी का शेर था कि नाराज ना थी मैं तेहे गाला खा, नाराज ना थी मैं तेहे गाला खा, तेरे नाल मोहब्बत थी गई है। सोना खिल दे।

0: जी रीसा कौन करे जी, पहले कॉल शामिल करते हैं फिर रीसे जो है। अच्छा जी रीसे हम तो रेसे जो है वो फिर लगाना शुरू कर देंगे। आयत फातिमा लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं जी, और इफ पॉसिबल प्ले एन इंग्लिश सॉन्ग, उर्दू नहीं समझ आती सही तो। अच्छा जी शामिल करते हैं, देखते हैं अगर मुझे प्ले लिस्ट में मिल जाता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन कहाँ से? एक तो अपने रेडियो जो है उसको बंद कर दें मेहरबानी करें, हाँ क्योंकि फिर लोग मैसेज करके कहते हैं कि जी हमें पता नहीं एटीट्यूड है, हमें एंटरटेन करने के लिए आते हैं लोग यहाँ पे, अब क्या करें जी, लोग फिर समझते नहीं है ना कि ये मसला होता है, ये मेरे अपने जाती कान है। आपको आवाज आ रही मेरी? अब तो ये बंद करें ना रेडियो, मुझे फीडबैक वापस आ रहा है। तो ये फीडबैक किस चीज का आ रहा है?
1: ये मोबाइल में कुछ मसला है।
0: मोबाइल में कुछ मसला है? अच्छा चलें जी, या अल्लाह खैर। अगर आप हेडफोन्स लगा के कॉल कर रहे हैं ना तो इसको भी उतार लें। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। हमारी एक बहन है, उन्होंने मैसेज किया था कि जी आप आप लोग सुनते हैं सिर्फ घरों में, आओ ना जरा फिर तो हमें पता चले, ऐसा सोखा काम नहीं है। एक मैसेज करने में तो शायद आपको इतना वक्त ना लगा होगा, लेकिन हमें सीखते हुए बहुत वक्त लग चुका है। अस्सलाम वालेकुम जी।
2: अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।
0: वालेकुम अस्सलाम हमीद गुल साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं?
2: आप ठीक हैं? खैरियत से?
0: अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। छलड़े छलड़े वाल
2: आले, वो मुझे बड़ा मजा आया। फिलहाल मोहब्बत ठीक है ये। क्या सराइकी की दौरान का अपने जन कहने अपने ही चाच से होता है ना?
0: हाँ नाराज ना थी मैं ते एक गाल आखा,
2: हाय हाय हाय हाय
0: तेरे नाल मोहब्बत ठीक गई है।
2: ठीक गई है रे, क्या खूबसूरती है जी। नाराज ना वो अली हसैन साहब गा करते थे, फिर पड़े
0: फिर पड़े।
2: हाँ
0: नाराज ना थी मैं ते हे गाल आखा,
2: हाय हाय हाय
0: ते नाल मोहब्बत थी गई
2: है। क्या खूबसूरत आवाज है। आप ठीक हैं यूसुफ साहब? खैरियत से?
0: हाँ जी कुछ बेहतर है, जरा कुछ सटे शटे लगी हैं तो।
2: क्या हुआ सर?
0: ये अभी पिछले दिनों कोई वो बाइक पे हम जा रहे थे तो बस समझ नहीं आई।
2: ज्यादा
0: नहीं बचत हो गई, हड्डियां छड़ियां बच गई, बाकी चिरीठा बढ़िया लगी।
2: चिरीठा बढ़िया लगी, अल्लाह महफूज रखे सबको।
0: थैंक यू सो मच।
2: सफर में आते जाते हैं मोटरसाइकिलों पे गाड़ियों पे। वो हमारे बुजुर्ग कहा करते थे आपके लिए जो सुनने बात।
0: जी जी जरूर।
2: तो एक दफा या सलाम पढ़ के निकला करें, इससे बड़ी बचत होती है। मैंने देखा है, मैंने इसको आजमाया भी है।
0: दोबारा बताएं, आपकी आवाज बीच में ब्रेक हो गई थी।
2: मैंने कहा हमारे बुजुर्ग बताते थे
0: जी जी
2: कि जब आप घर से निकले तो एक दफा आयतुल कुर्सी पढ़ा करें।
0: अच्छा जी,
2: और 11 दफा या हफीजो या सलामो पढ़ा करें।
0: अच्छा जी माशाल्लाह,
2: तो ये बड़ा मुजरब है आपकी हिफाजत के लिए।
0: बेशक
2: किसी बिजली वाले को जो बिजली के खम्भों पे चढ़ते हैं तो मैंने उसको देखा वो बज गया। तो मैंने कहा कि आपकी बड़ी किस्मत है, मतलब बिजली का काम तो आपको पता है बड़ा खतरनाक है ना खंभों पे। तो वो तकरीबन कुछ 45-46 साल की उम्र का था। तो उसने कहा था कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ा यकीन होता है कि मुझे बिजली कुछ नहीं करेगी। तो फिर उसने भी मुझे बताया कि मैं ये पढ़ता हूँ या हफीज़ो या सलाम। तो ये आप भी पढ़ लिया करें
0: इंशाल्लाह जी।
2: दो चार शेर सुना दें आपको?
0: जी जी सुना दें, आपकी कॉल अभी शामिल की है तो सुना दें आप।
2: मौसम नकवी

0: दो चार शेर हैं
1: जी जी
0: कि बोल हवा उस पार जमाने कैसे हैं,
1: बोल हवा उस पार जमाने कैसे हैं,
0: उजड़े यार उजड़े शहर में यार पुराने कैसे हैं,
1: आए होए
0: उजड़े शहर में यार पुराने कैसे हैं, और चांद उतरा है अब किसके आंगन में,
1: चांद उतरा है अब किसके आंगन में,
0: किरणों से महरूम घराने कितने हैं कैसे हैं, किरणों से महरूम घराने कैसे हैं, और लबबस्ता दरवाजों पर क्या बीत गई। आपको पसंद है कि लबबस्ता दरवाजों पर क्या बीत गई, गलियों से मंसूब अफसाने कैसे हैं, गलियों से मंसूब अफसाने कैसे हैं, और जहर उगलते सांपों की फनकार तले, वीरानों में दफन खजाने कैसे हैं,
1: क्या बात है।
0: और आपकी नजर शेयर कर रहा हूं कि जिनकी कमीजें चाक तेरे हाथ लगी, जिनकी चाक कमीजें तेरे हाथ लगी, खाक पहने वो दीवाने कैसे हैं,
1: वो दीवाने कैसे हैं,
0: हाँ, और जिनकी जुर्मट में शम्मे दम तोड़ गई, वो प्यारे वो प्यार से पागल परवाने कैसे हैं,
1: परवाने कैसे हैं।
0: और लगता है कि मोहसिन हम तो खैर खबर से दर गुजर में अपने घर के लोग न जाने कैसे हैं।
1: ये किस मकाम पे सूझी तुझे बिछड़ने की,
0: हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ,
1: ये किस मकाम पे सूझी तुझे बिछड़ने की, कि अब तो जाके कहीं दिन संवरने वाले थे।
0: हाँ वो कहा था उन्होंने, अपना क्या नाम है, कराची के बड़े मशहूर शायर हैं सलीम कौसर साहब ने
1: जी,
0: यही है ना तुम्हें हमसे बिछड़ जाने की जल्दी है, यही है ना तुम्हें हमसे बिछड़ जाने की जल्दी है। कभी मिलना तुम्हारे मसले का हल निकाल,
1: तुम्हारे मसले का हल निकालेंगे,
0: तेरे नाल मोहब्बत थी ये खुश रहे सलामत रहे सर।
1: थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का।
0: थैंक यू सो मच,
1: बहुत शुक्रिया जी। हमीद गुल साहब हमेशा बहुत ही अच्छा और खूबसूरत कलाम लेके आते हैं। कि अपनी धुन में रहता हूँ मैं भी तेरे जैसा हूँ, मैं भी इंसान हूँ।

दिल की बात लबों तक लाकर। हाय हाय हमने सुना था इस बस्ती में दिल वाले भी रहते हैं। एक हमें आवारा कहना, कोई बड़ा इल्जाम नहीं। हाँ जी, आप कहते हैं कि हम कश्तियां चला के आ गए हैं, माचिस तो हमारे पास थे, हम जलाएंगे। दुनिया वाले दिल वालों को और बहुत कुछ कहते हैं। अपनी धुन में रहता हूँ मैं भी तेरे जैसा हूँ।

0: अपनी धुन में रहता हूँ, मैं भी तेरे जैसा हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो। वालेकुम अस्सलाम जी। स्टिल आपकी आवाज़ से मुझे फीडबैक आ रहा है। जी आप अपनी बात कर लें। नहीं, स्टिल वैसे ही आ रही, मुझे मुश्किल हो रहा है। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। ज़रा अपना देख लें, अगर आप फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप हेडफोन्स लगा के अगर कॉल कर रहे हैं, वो पहले रिमूव कर दें। थोड़ी सी चीज़ हो जो आप कॉल में वाली जगह ना हो। बहुत जो लिसनिंग एंड पे जब आपको आवाज़ सुनाई देती है ना, बहुत ही अजीब सी। और मैंने हेडफोन्स पहने हुए हैं और मेरे हेडफोन की पता ये क्या क्वालिटी है कि जब से मैंने ये वाले यूज़ करना शुरू किया, जो घड़ी की जो टिक टिक होती है ना, ये भी मुझे सुनाई देती है इसमें। और जब आप इतना कॉल करेंगे और उसमें जो फीडबैक मुझे वापस आता है ना, सच में जाके ना इस वक्त वो हिट करता है। तो कोशिश ये है थोड़ा सा अपनी जो जगह उसको क्लियर कर लें। और अगर आप ट्यूनर के पास बैठ के अगर मेरी कॉल अपनी कॉल जो है वो सुनना चाहते हैं, तो ये भी मेहरबानी करें और उसके बाद अपने हेडफोन्स जो है वो रिमूव कर दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
1: यूसुफ भाई क्या हाल है?
0: शुक्र लगा, तारुफ करवा दे, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से?
1: अब्दुल नूर हाशमी, रिवाज गार्डन लाहौर।
0: कैसे हैं आप? ठीक हैं
1: अल्हम्दुलिल्लाह। तेरे नाल मोहब्बत थी गई है।
0: आए, बड़ा शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो एक कतरा खून ना निकला है।
1: ख्वाजा हैदर अली आदिश का शेर है।
0: अच्छा,
1: और इस सराकी आपने जो शेर पढ़ा था तेरे नाल मोहब्बत थी, हमारे सराकी के शायर थे डॉक्टर बेदिल हैदरी।
0: अच्छा,
1: कबीर वाला जरा खाने वाले से तल्लक था, अपने साथ डॉक्टर थे और बड़े उस्ताद थे शायरी के। उसमें एक इलम होता है इसका अरूज का, उसमें भी माहिर थे। उसमें मतलब वो ग्रामर का ख्याल रखना पड़ता है। तो उनके चंद शेर, भूख चेहरों पे लिए चांद से प्यारे बच्चे, भूख चेहरों पर लिए चांद से प्यारे बच्चे, बेचते फिरते हैं गलियों में गुब्बारे बच्चे।
0: अच्छा,
1: इन हवाओं से तो बारूद की बू आती है, इन फजाओं में तो मर जाएंगे सारे बच्चे। क्या भरोसा है समुन्दर का खुदा खैर करे,
0: क्या भरोसा है समुन्दर का खुदा खैर करे,
1: क्या भरोसा है समुन्दर का खुदा खैर करे, सिपियां चुनने गए हैं मेरे सारे बच्चे। हो गया चरखे सितमगर का कलेजा ठंडा, मर गए प्यास से दरिया के किनारे बच्चे। और एक आखिरी शेर, ये जरूरी है नए कल की जमानत दी जाए, वरना सड़कों पर निकल आएंगे सारे बच्चे।
0: अच्छा,
1: ये उन्होंने ना जो चाइल्ड लेबर है उस पे एक गजल कह दी, तो मैंने कहा भी शामिल कर दूं।
0: थैंक यू सो मच
1: भाई, आप ठीक है?
0: अल्हम्दुलिल्लाह जी, शुक्र अल्लाह का।
1: थैंक
0: यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। और अच्छा जी, हसनैन दाऊद हमारे साथ मौजूद हैं जी। अस्सलाम वालेकुम भाई हसनैन फ्रॉम मरी। और आपने भी कुछ लिख भेजा है कि बचपन से लड़कपन। अच्छा ठीक है जी। और बचपन से लड़कपन तक का सफ़र, ना कल की फिक्र ना आने वाले कल का गम, मच्छी के घरौंदे कागज़ की कश्ती, बारिश का पानी और खेतों में मस्ती, माँ की गोद में जन्नत का सुकून था, बाप के कंधे पर दुनिया जीतने का जुनून था।

दिल के मदफन पे नहीं कोई भी रोने वाला, अपनी दरगाह के हम खुद ही मजावट ठहरे। एजाज मार्शल मौजूद है अगेन, और सर एक सॉन्ग लगा दें प्लीज, इंतजार। अब सिंगर का नाम पता हो तो चले, बंदा कोशिश भी कर सकते, लेकिन इंतजार तो हमें भी है। आरजे मोहम्मद आदिल सियाल सरायकी का एक उन्होंने लिख भेजी है, वैसे इसका जो अदायगी ना लव्स की बड़ी औखी होती है। कहते को धुपते टुरंदा, तेको धुपते टुरदा देख करा ही मैं चाहते बाणा छोड़ दिते, तो टुरदे नाल रकीबा दे मैं रोड ते आवन छोड़ दिते, तैं हर दावत मंजूर की थी मैं घर दा खावना छोड़ दिते, तेको गैर दी सेंज पसंद आ गई मैं खट ते बाणा छोड़ दिते। हाँ जी, ऐसे भी बोल करते हैं। अपनी धुन में रहता हूँ मैं भी तेरे जैसा हूँ,

मैं फ्रॉम इस्लामाबाद भाई। मेरे एक भाई हैं, उनको उनका नाम भी यूसुफ है। एक माह पहले उनको स्नेक ने काटा था। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, सेम आपकी तरह, मतलब उन मेरी बारी लगी है। थैंक यू सो मच। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है हमको, अब तक आशिकी का आशिकी का वो जमाना याद है। आपको भी याद है, आपको तो खाना पीना भी याद नहीं। अब सर जी आपके भी हाल पे अल्लाह ताला रहम करे। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। इस वक्त हमारे साथ ड्यूटी पे मामूर हैं। किसी वक्त आरजेज हमारा इस तरह तारुफ करवाया करते थे, और अभी जीशान हमारे साथ मौजूद है इस वक्त ड्यूटी पे। एक रिक्वेस्ट है मेरी सब लिसनर से, जो जो भी सुन रहे, बस जब भी दुआ करें इनके हक में जो बेहतर है, अल्लाह ताला इनको अता करे, उसकी दुआ जरूर कीजिएगा। बहुत ही अच्छा इंसान है। और एक पिक्चर इनकी मेरे पास, और मतलब हम दोनों के पास वो मौजूद है। और क्या वो ज़माना था वैसे, कितना खूबसूरत और प्यारा ज़माना था।

कि मुझे मालूम था गालिब वो मेरा हो नहीं सकता। मुझे मालूम था गालिब वो मेरा हो नहीं सकता, लेकिन देखो मुझे फिर भी मोहब्बत हो गई उससे। वो कहता है कि सोच लेना था मोहब्बत करने से पहले, उसे क्या पता कि सोच के साजिश की जाती है मोहब्बत। नहीं लेकिन देखो मुझे फिर भी मोहब्बत हो गई उससे।

कि कुछ मोहब्बतें शायद मुकम्मल होने के लिए नहीं होती हैं, वो बस इंसान के दिल में खूबसूरत दर्द बनकर रह जाती है। हम लाख खुद को समझा लें कि अब बस, मगर दिल कहां किसी की बात मानता है। पा सकने की उम्मीद रहती है ना भुला पाने की हिम्मत, बस एक खामोश सी ख्वाहिश दिल में रह जाती है। कि तुम पहले जाते हो तुम्हारी खुशबू रह जाती है। खुशबू में तुम्हारा लम्स होता है, तुम नहीं होते, तुम्हारे होने का वहम होता है। 400 तुम्हारी आवाज की धमक रह जाती है। मेरी समातों में गूंजती है, मुझे थरपाती है। शब भर में हम तुम्हें बार बार पुकारते हैं और जो तुम्हारे बाद भी हम तुम में ही जिए जाते हैं।

जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम, कि तुम कायनात का वो वाहिद इंतखाब हो जिसके बाद दिल ने किसी और की तमन्ना करना ही छोड़ दी। दुनिया की इस भीड़ में जहाँ चेहरे बदलते हैं और रिश्ते मिटते हैं, तुम्हारी जगह कोई दूसरा कभी नहीं ले सकता। तुम्हारा मुतबादल ना कोई पहले था, ना आज है, और ना आने वाले वक्त में कभी हो सकता है। कि मैंने एक उम्र खर्च की है तुम पे, तुम मेरा कीमती एहसासा हो।

के बाद डाला है जिंदगी ने हमें अपने हिस्से में, बांध डाला है जिंदगी ने हमें अपने हिस्से में, हम नहीं आए। मामा शर्द मौजूद है जी मुल्तान से, उन्होंने हमें लिख भेजा है। मैंने ऐ दिल तुझे सीने से लगाया हुआ है और तू है कि मेरी जान को आया हुआ है, बस इसी बोझ से दोहरी हुई जाती है कमर, जिंदगी का जो ये एहसान उठाया हुआ है। क्या हुआ गर नहीं बादल ये बरसने वाला, ये भी कुछ कम तो नहीं है जो ये आया हुआ है। राह चलती हुई इस राह गुजर पर अजमल, हम समझते हैं कदम हमने जमाया हुआ है, हम ये समझते थे कि हम भूल गए हैं उसको, हम ये समझते थे कि हम भूल गए हैं उसको, आज बेतरह हमें याद जो आया हुआ है।

कि मजबूत होने का ये खसारा है कि कोई नहीं जानता आप कितनी तकलीफ में हैं। जैसे वो शेर है कि खौफ ये है कि दिल के जख्म देख ना ले कोई, खौफ ये है कि दिल के जख्म देख ना ले कोई, ख्वाहिश ये है कि काश कोई देखने वाला होता। आप लोगों से इजाज़त लेने का वक्त आ चुका है। इस दुआ इस यकीन के साथ आप लोगों से इजाज़त लेंगे कि हर आने वाला कल आपके लिए बहुत सारी खुशियां लेके आए। जाने अनजाने में अगर कोई भी बात आपकी समाकराशी का सबब बनी हो तो माज़र चाहूँगा, माफ़ कीजिएगा। इंसान है, इंसान होने के नाते गलती हो सकती है। सो खत्म मकसद नहीं होता कि आप लोग हर्ट हों।

जिंदगी शब्द है, जिंदगी ने वफा की। तो माइक्रोफोन की जानिब से आपसे फिर किसी प्रोग्राम किसी ट्रांसमिशन में आन मिलेंगे, लेकिन जिंदगी शर्त है। आई हैड अ वंडरफुल टाइम। अगली मरतबा जब आपसे मुलाकात होगी, और जब भी मुलाकात होगी, होपफुली एक नए अज़म के साथ, और भूले नहीं होंगे आप। लेट्स प्रूव इट। ये आपने साबित करके दिखाना है, यू डोंट हैव अ शॉर्ट मेमोरी। तन्हाई से छुटकारा पाने को अपनाया था तुम्हें, मुकद्दर है ये तन्हाई ये न मालूम था हमें, करके तन्हाई में तुमसे कुछ मीठी मीठी बातें। अकेले में होना है ये महसूस करने का तुम्हें, आ जाना मिटा जाना इस तन्हाई को, कि फिर से दावत हम देते हैं तुम्हें। अल्लाह हाफिज़।

तो सितारों से बहुत दूर है, तो सितारों से बहुत दूर है मैं जानता हूं। तू सितारों से बहुत दूर है मैं जानता हूँ, अपनी मखलूक से मस्तूर है मैं जानता हूँ, लेकिन मैं एक राज से आगाह किए देता हूँ। मैं शनासा हूँ तेरा, मैं तुझे जानता हूँ। मैंने मासूम बहारों में तुझे देखा है, मैंने मोहूम सितारों में तुझे देखा है। मेरे महबूब तेरी पर्दा नशीनी की कसम, मैंने अशकों की कतारों में तुझे देखा है, मैंने अशकों की कतारों में तुझे देखा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा है परवरदिगारे दो आलम के बाबरकत नाम से, जो नहायत मेहरबान है, जिसकी शफकत अबदी है। तमाम बुजुर्गी है उस रब्बे कायनात के लिए जो वाहदहू ला शरीक है, जो बनाने वाला। आपकी और मेरी शाहरख से भी ज्यादा करीब है। वो समी है जो सुन लिया करता है आपके और मेरे दिल की धड़कनों को। वो बसीर है जो देख लिया करता है काली रात में काली रात में काले पहाड़ के काले पत्थर पे चलने वाली काली चूंटी को। वो हिदायत देना चाहे तो वो मुकल्लिबुल कुलूब है, और वो रास्ते हमवार करना चाहे तो वो मुसब्बिबुल असबाब है। वो रहमान भी है, वो जब्बार भी है, वो रहीम भी है, वो कहार भी है। वो तौबा कबूल करना चाहे तो वो तवाब भी है, और वो मुजरिमों से इंतकाम लेना चाहे तो वो मुंतकिम भी है। वो रब है मशारिक का और मगारिब का, जमीन व आसमां में जो कुछ है उसी का है, हम उसी की इबादत करते हैं और उसी से मदद मांगते हैं, और एक दिन हमें उसी की तरफ लौट कर जाना है।

समय ने मोहतरम FM 101 पाकिस्तान के इस्लामाबाद स्टेशन के माइक के तवसत से फ़जाओं में सफ़र करती लहरों के दोष पर आपके रेडियो सेट से आपकी समाहतों में सरायत करती ये आवाज़ है खाकसार आतिर अली सैयद की। तमाम समाहतों को आतिर अली सैयद का प्यार भरा सलाम पहुँचे। अस्सलाम वालेकुम और सलाम व सलामती के साथ कि जिसमें रहें आप महफूज तमाम तर बलाओं से, तमाम तर परेशानियों से, और रहें हमेशा हंसते मुस्कुराते, खुशियां बांटते, आसानियां बांटते। प्रोग्राम 101 इंटरनेशनल पेश खिदमत है, हुआ करती हैं आपसे बातें, आपकी बातें कुछ, मेरी बेरत बातें आपका खूबसूरत साथ, कुछ नज़में, कुछ गज़लें, कुछ अशार प्रोग्राम की जीनत बनते हैं और यूं शब का ये पहर काटने की काविश हुआ करती है। 28 सितंबर 2026 की शब में हम दाखिल हो चुके हैं, 12 बजकर तकरीबन 10 मिनट हुआ चाहते हैं। 2 बजे तक का साथ रहेगा आपका मेरा इस महफिल में और हमेशा की तरह शिरकत के चंद ज़राए आपको बताता चलूँ। अपना पैगाम मुझ तक पहुँचाइएगा 4471 यानी 4471 पर। पैगाम के आगाज़ में आपने 101 यानी 101 लिखना है तो ही आपका पैगाम मुझ तक पहुँचेगा, और 101 के बाद अपना पैगाम, अपना नाम, जगह का नाम, इस मुकम्मल पैगाम को 4471 पर भेज दीजिएगा। facebook.com/fm101 चैनल पाकिस्तान वेब एड्रेस है फेसबुक पर FM101 पाकिस्तान के ऑफिशियल फैन पेज का। तो जनाब वहाँ एक स्टेटस अपडेट हुआ है चंद लम्हे पहले आतिर अली सैयद और 101 इंटरनेशनल के नाम से, उस पर कमेंट कीजिएगा, प्रोग्राम में शामिल करूँगा। इसके अलावा जनाब 9202540920254 पर आपकी टेलीफोन कॉल्स होंगी चंद लम्हों में, बल्कि कुछ देर बाद टेलीफोन लाइंस आपके लिए खोल देंगे, तो आपकी शिरकत हो सकेगी प्रोग्राम में टेलीफोन कॉल्स के जरिए भी।

मेरी थम थम जावे सांस पिया, मेरी आंख को सामन रास पिया। मेरी थम थम जावे सांस पिया, मेरी आंख को सावन रास पिया। तुझे सुन सुन दिल में हूक उठे, तेरा लहजा बहुत उदास पिया। तेरे पैर की खाक बना डालूं, मेरे तन पर जितना मांस पिया। तू जाहिर भी तू बातिन भी, तेरा हर जानिब एहसास पिया। तेरी नगरी कितनी दूर सजन, तेरी नगरी कितनी दूर सजन। मेरी जिंदड़ी बहुत उदास पिया, मुझे सारे दर्द कुबूल सजन। मुझे तेरी हस्ती रास पिया, और मैं चाकर तेरी अजलों से तू अफजल खासुल खास पिया। मेरा चैन पिया, मेरी जान पिया, मेरी जिंदड़ी का सुल्तान पिया। तेरी राह तकते हैं नैन मेरे, कभी दिल का बन मेहमान पिया। मेरा तेवर तू, मेरा कोमल तू, मेरा भेरो शुद्ध कुलियान पिया। मेरा जहन भी तू, मेरा मान भी तू, मेरा जहन भी तू, मेरा मान भी तू, मेरा जिक्र जुहद पिया। मेरा जहन भी तू, मेरा मान भी तू, मेरा जहन भी तू, मेरा

तेरे पैर की खाक बना डालूं, मेरे तन पर जितना मांस पिया। तू जाहिर भी तू बातिन भी, तेरा हर जानिब एहसास पिया। तेरी नगरी कितनी दूर सजन, मेरी जिंदड़ी बहुत उदास पिया।

हम बेबस हम मजबूर पिया, मत हमसे होना दूर पिया। हम बेबस हम मजबूर पिया, मत हमसे होना दूर पिया। हम किरची किरची दिल वाले, हम हो गए चकना चूर पिया। अब कौन अनल हक हु बोले, अब कौन बने मंसूर पिया। जब नाम तुम्हारा सुन ले मैं,

हम हो जावे मसरूर पिया। एक बार हमें अपना कहकर तुम कर दो ना मगरूर पिया। हमें नाक डसें बेचैनी के, तुम जब से हो महजूर पिया। हम आखिर तेरी चाहत में हो बैठे हैं महसूर पिया। इस दिल अंदर तस्वीर तेरी, तेरा तेरा चारों जानिब नूर पिया। और एक सच्ची प्रीत के बंधन में हमें मर जाना मंजूर पिया। हम बेबस हम मजबूर पिया, मत हमसे होना दूर पिया।

कहते हैं कि जब आप किसी इंसान से बात करते हुए उसका नाम पुकारते हैं तो उसको ये बहुत खूबसूरत लगता है। यानी कि जो शय हमारी समाहतों को सबसे ज्यादा भाती है कुछ भी सुनते हुए, वो हमारा अपना नाम हुआ करता है। और कैसी अजीब बात है कि बहुत कम सुनने को मिलता है हमें हमारा नाम उस लहजे में, उस जबान में, उस आवाज में जिसमें हम सुनना चाहते हैं। मैं रेडियो की दुनिया को भी सुनता हूं, अगर देखता हूं पहले से, अब तो बहुत कुछ तब्दील हो चुका है, लेकिन एक वक्त हुआ करता था जब पैगाम पहुंचाया जाता था बाहर और बस ये होता था कि हमारा नाम ले लें और ये दोस्त हैं हमारे जो सुन रहे हैं, इनका नाम ले लीजिएगा, पहचान हुआ करता है ये नाम। लेकिन इस जाविये से देखें कि जब समातों तक पहुंचता है उस लहजे में, उस आवाज में जिसमें हम सुनना चाहते हैं, तो कुछ ज्यादा ही भाता है। और कभी कभी यूं हुआ करता है कि एक उम्र बीत जाती है उस आवाज में, उस लहजे में अपना नाम सुनने की ख्वाहिश में। बड़ी मासूम ख्वाहिशात हुआ करती हैं हम इंसानों की, और खास करके जब हम इंसान इस मोहब्बत के जज्बे में हुआ करते हैं, इसकी कैद में हुआ करते हैं, इसकी गिरफ्त में हुआ करते हैं, या इससे मरूब हुआ करते हैं। बहुत सी मासूम ख्वाहिशात हुआ करती हैं और परवान चढ़ती रहती हैं, हम खुद उन ख्वाहिशात को सींचते हैं ये जानते बूझते हुए कि आने वाले वक्त में हमें महजूर होना पड़ सकता है, हमें तकलीफ का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन ये छोटी छोटी खुशियां शायद इंसान को बहुत भाती हैं और वो आने वाले वक्त की तमाजत और आने वाले वक्त की मुश्किलात का इतना ख्याल करता नहीं है, इतनी फिक्र करता नहीं है। उसको आज का ये सुकून, आज की ये खुशियां ज्यादा प्यारी हुआ करती हैं। और क्या हो कि सुनने के साथ साथ कोई ऐसा भी हो जो नाम को पुकारता हो तो उसको भाता हो, उसको अच्छा लगता हो। कुछ ऐसे भी लोग हुआ करते हैं जो इस खुशी को मनाते हैं कि जब किसी का नाम उनके लबों पर आता है तो उनको बहुत भाता है। बहुत से जाविये हैं मोहब्बत के, बहुत से तरीके हैं इजहार मोहब्बत के। इंसानों के पास बहुत से अलग अलग जाविये हुआ करते हैं। हर किसी को अपनी मोहब्बत ज्यादा बेहतर लगती है, दूसरों से मुख्तलिफ लगती है। हर किसी को अपने अंदाज दूसरों से मुख्तलिफ लगते हैं। तुम्हारा नाम कुछ ऐसे मेरे होंठों पे खिलता है, तुम्हारा नाम कुछ ऐसे मेरे होंठों पे खिलता है, अंधेरी रात में जैसे अचानक चांद बादल के किसी कोने से बाहर झांकता है, और सारे मंजरों में रोशनी सी फैल जाती है। तुम्हारा नाम कुछ ऐसे मेरे होंठों पे खिलता है, अंधेरी रात में जैसे अचानक चांद बादल के किसी कोने से बाहर झांकता है, और सारे मंजरों में रोशनी सी फैल जाती है।
कली जैसे लरजती ओस के कतरे पहनकर मुस्कुराती है। बदलती रुत किसी मानूस सियाहट की डाली लेके चलती है, तो खुशबू बाग की दीवार से रोके नहीं रुकती। इसी खुशबू के धागे से मेरा हर चाक सिलता है। तुम्हारे नाम का तारा मेरी सांसों में खिलता है। तुम्हें मैं देखता हूं जब सफर की शाम से पहले, तुम्हें मैं देखता हूं जब सफर की शाम से पहले, किसी उलझी हुई गुमनाम सी चिंता के जादू में, किसी सोचे हुए बेनाम से लम्हे की खुशबू में, किसी मौसम के दामन में, किसी ख्वाहिश के पहलू में। तो इस खुश रंग मंजर में तुम्हारी याद का रास्ता न जाने किस तरफ से फूटता है, और फिर ऐसे मेरी हर राह के हमराह चलता है कि आंखों में सितारों की गुजरगाहें सी बनती हैं, धनक की कहकशाएं सी तुम्हारे नाम के इन खुशनुमा हरफों में ढलती हैं कि जिनके लम्से होंठों पे जुगनू रक्स करते हैं। तुम्हारे ख्वाब का रिश्ता मेरी नींदों से मिलता है तो दिल आबाद होता है, मेरा हर चाक सिलता है। तुम्हारे नाम का तारा मेरी रातों में खिलता है। तुम्हारे नाम का तारा मेरी रातों में खिलता है। तुम्हारा नाम कुछ ऐसे मेरे होंठों पे खिलता है, अंधेरी रात में जैसे अचानक चांद बादल के किसी कोने से बाहर झांकता है और सारे मंजरों में रोशनी सी फैल जाती है। कली जैसे लरजती उसके कतरे पहनकर मुस्कुराती है। तुम्हारे नाम का तारा मेरी रातों में खिलता है तो दिल आबाद होता है, मेरा हर चाक सिलता है।

तुम्हारे नाम के हर्फों से बेहतर हर्फ अब्जद में नहीं है। न जाने कब से ये मौसम सितारों की तरह धरती के सीने पर फरोजा है, मगर इनकी निगाहों ने तुम्हारे वसल के लम्हों से बेहतर वक्त देखा है न सोचा है। हवा ने मंजरों पर आज तक जो कुछ भी लिखा है तुम्हारे नाम लिखा है। खला में टूटते तारे तुम्हारे बाम से गुजरे तो रुकने को मचलते हैं, फलक को चूमते जज्बे तुम्हारी आंख से उतरे तो पातालों में गिरते हैं। तुम्हारे ख्वाब से रोशन मीनारे वक्त के दरियाए बेहद में नहीं, तुम्हारे नाम के हर्फों से बेहतर हर्फ अब्जद में नहीं है।

और मेरा नाम है आतिर अली सैयद। मुसाफत शब एफएम 101 इंटरनेशनल सुन रहे हैं आप, रेडियो पाकिस्तान का इस्लामाबाद स्टेशन। 12 बजकर तकरीबन 36 मिनट हुआ चाहते हैं। टेलीफोन लाइंस आपके लिए खोल दी गई हैं 9202 5404।

0: कोई अच्छी बात, कोई खूबसूरत बात, कोई ऐसी बात जिससे आप समझते हो कि किसी समाज का भला हो सकता है, प्रोग्राम में शामिल कीजिएगा। और पैगामात भी मुझ तक पहुंचाइएगा 447 यानी 4471 पर। एक कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
1: अस्सलाम वालेकुम शाह साहब।
0: वालेकुम अस्सलाम।
1: जी खैरियत से हो?
0: अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हूँ जनाब। कौन है, कहाँ से?
1: असद नाम है मेरा, कुहाट से ताल्लुक है, लाहौर में ड्यूटी कर रहा हूँ। सर जी प्रोग्राम सुन रहे हैं, बहुत अच्छा प्रोग्राम है।
0: बहुत शुक्रिया।
1: बस सर जी मैंने कहा प्रोग्राम में हम भी शरीक हो जाए।
0: ठीक है
1: सर जी, बस यही कहना था। सलामत वाले को बहुत सलाम, टाइम जाया नहीं कर रहा हूँ।
0: सलामत,
1: अच्छा प्रोग्राम है सर।
0: सलामत रहे, सलामत रहे, आबाद रहे। बहुत
1: शुक्रिया।
0: वालेकुम सलाम। अच्छा है जनाब, अपने होने का एहसास दिलाया आपने। एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी बंद हो गई, दोबारा कीजिएगा। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम
2: जी, सलाम, बात कर रही हूँ, कैसे हैं आप?
0: मैं अच्छा हूँ जी, आप ठीक हैं?
2: ठीक ठाक शुक्रिया का।
0: क्या कहेंगी सनम?
2: मैं एक नज़्म सुनाना चाहती हूँ।
0: सुनाइए।
2: ठीक है। मेरी जिंदगी है जालिम, तेरे गम से आशिकारा।
0: तेरा गम है दर हकीकत मुझे जिंदगी से प्यारा।
2: तेरा गम है दर हकीकत मुझे जिंदगी से प्यारा।
0: वो अगर बुरा ना माने तो जहान रंग बू में मैं सुकून है दिल की खातिर कोई ढूंढ लूं सहारा। ये मुझे सुनाना था बस ऐसे ही। अब आप सुनाइए, मैं आपको इंटरप्ट
2: करता हूं। जो पिछली दफा आपने आपने वो पढ़ी थी एक नज़म, उसके क्या नाम है, गजल थी या नज़म थी, अमजद इस्लाम अमजद की ना, वो मैंने तैयार की हुई थी प्रोग्राम के।
0: अच्छा ठीक है, चले अब आप ये सुनाए, मैं इंटरप्ट नहीं करूंगा, सुनाइए।
2: ठीक है जी। मेरी जिंदगी है जालिम, तेरे गम से आशिकारा, मैं तेरा गम है दर हकीकत मुझे जिंदगी से प्यारा। तू अगर पूरा न माने तो जहान रंग बू में मैं सुकून दिल की खातिर कोई ढूंढ लूं सहारा। मुझे तुझसे खास नस्बत, मैं रहूं मुझे तो वहां, यानी जिन्हें जिंदगी थी प्यारी उन्हें मिल गया किनारा। मुझे आ गया यकीन सा कि यही है मेरी मंजिल, सरे राह मुझको किसी ने है तफतन पुकारा। ये खुनक खुनक हवाएं, ये झुकी झुकी गिटाएं, वो नजर भी क्या नजर है जो समझ ना ले इशारा। मैं बताऊं फर्क ना से जो है मुझ में और तुझ में, मेरी जिंदगी तलातम तेरी जिंदगी किनारा।
0: जिंदगी किनारा, बहुत अच्छा जी जी, सुनाइए सुनाइए।
2: मुझे फख्र है इसी पर, ये करम भी है मुझे पर, तेरी कम निगाहियां भी मुझे क्यों ना हो गवारा। मुझे गुफ्तगू से बढ़कर गमे इतने गुफ्तगू है, वही बात पूछते हो जो कह ना सकूं दोबारा। कोई उसे शकील पूछे ये जुनून क्या है,
0: ये जुनून नहीं तो क्या है,
2: कि उसी के हो गए हम जो हो ना सका हमारा,
0: जो ना हो सका हमारा। बहुत अच्छा।
2: मेरी जिंदगी है जालिम, तेरे गम से आशिकारा, तेरा गम है दर हकीकत मुझे जिंदगी से प्यारा।
0: बहुत
2: शुक्रिया,
0: सलामत रहें, आबाद रहें। बहुत शुक्रिया,
2: बहुत शुक्रिया, अल्लाह
0: हाफिज़।

जी, एक कॉल और शामिल करते हैं और फिर कुछ गुफ्तगू का रब्त बांधेंगे। ड्रॉप हो गई, दोबारा कोशिश कीजिएगा। बदकिस्मती को यह भी गवारा ना हो सका, हम जिस पे मर मिटे वो हमारा ना हो सका। खुशियों के बाद शोरिश तूफान की रह गई, अच्छा हुआ नसीब किनारा ना हो सका। बेचारगी पे चारागरी की हैं तोहमतें, बेचारगी पे चारागरी की हैं तोहमतें, अच्छा किसी से इश्क का मारा ना हो सका। कुछ इश्क ऐसी बख्श गया बेनियाजियां, दिल को किसी का लुत्फ गवारा ना हो सका। फरते खुशी में आंख से आंसू निकल पड़े जब उनका अल्तफात गवारा ना हो सका। उल्टी तो थी नकाब किसी ने मगर शकीब, दावों के बावजूद नजारा ना हो सका। बदकिस्मती को यह भी गवारा ना हो सका, हम जिस पे मर मिटे वो हमारा ना हो सका।

दिन की आहें न गईं, रात के नाले न गए, मेरे दिल सोज मेरे चाहने वाले न गए। अपने माथे की शिकन तुमसे मिटाई न गई, अपनी तकदीर के बल हमसे निकाले न गए। तस्करा सोजे मोहब्बत का किया था एक बार, था दमे मर्ग जबां से मेरी छाले न गए। शमारो हो के फकत तुमने जलाना सीखा, मेरे गम में कभी दो अश्क निकाले न गए। आज तक साथ हैं सरकारे जनों के तोहफे, सर का चक्कर न गया पाँव के छाले न गए। वो भला पेश निकालेंगे मेरी किस्मत के, अपने बालों के तो बल उनसे निकाले न गए। और कोई शब ऐसी न गुजरी के बना कर गेसू, सैकड़ों बल मेरी तकदीर में डाले न गए। हम सफर ऐसे वफादार कहाँ मिलते हैं, तेरे वहशी के कदम छोड़ के छाले न गए। अपना दीवान मुरक्का है सीनों का जलील, नुक्ता ची थक गए कुछ ऐब निकाले न गए। तज़करा सोज़े मोहब्बत का किया था एक बार, तदमे मर्ग ज़बां से मेरी छाले न गए।

जी हजूर, इस तरह की ख्वाहिशात भी हुआ करती हैं कभी। शमारो हो के फकत तुमने जलाना सीखा, मेरे गम में कभी दो अश्क निकाले न गए। दिन की आहें न गईं, रात के नाले न गए, मेरे दिल सोज मेरे चाहने वाले न गए। ये मोहब्बतों के करीने बड़े अलग हुआ करते हैं, ख्वाहिशात बड़ी अलग हुआ करती हैं। अक्सर कहा करता हूं कि मोहब्बत में इंसान बहुत मासूम हो जाते हैं। ये जज्बा अपनी जात के अंदर जितनी शिद्दत रखता है उतनी ही मासूमियत भी रखता है। कहीं कोई शेर, कोई डायरी, कोई सूखे फूल संभालता फिरता है इंसान। कहीं कोई मकाम हुआ करता है जो जहन में मनक्कश रहता है, कुछ कोई खुशबू हुआ करती है, कोई मौसीकी हुआ करती है जो माजी में ले जाती है, कोई खुशबू जो फजा को मुअत्तर कर देती है, और बहुत सी अनछुई अशिया हुआ करती हैं इंसान जिनसे हज उठाने की कोशिश करता है, अपने माजी को जिंदा रखने की काविश में रहता है। क्या अजीब बात है कि ये मोहब्बतें माजी बन जाती हैं। मोहब्बत का जज्बा जिसको बस हाल में वारिद होना होता है कभी माजी बन जाता है, क्योंकि इंसान है और इंसान के पास ये वक्त ही तो है। माजी के पछतावे और फिक्र फरदा, इनके बीच में हाल में वक्त गुजारता हुआ इंसान इन जज्बों को साथ लिए, खास करके मोहब्बत के जज्बे को। अक्सर कहा करता हूं कि बड़े सख्त जान हुआ करते हैं हम इंसान, जिस कयामत का तसव्वुर भी नहीं कर सकते, वो कयामत बीत जाती है और सह लिया करते हैं। लेकिन उससे पहले पहले हम उस कयामत का तसव्वुर करना नहीं चाहते। हमें अच्छा लगता है वो वक्त जो गुजर रहा होता है हमारी मर्जी के मुताबिक, जिसको हम अपनी मर्जी से संवारते हैं, हमारी मर्जी की जिंदगी, जब तक कि हम उसको गुजार सकते हैं, गुजारना चाहते हैं, और उसके गुजर जाने के बाद भी हमारे पास हमारा तसव्वुर, हमारा तखय्युल हुआ करता है, जिसको हम अपनी मर्जी से सजाते रहते हैं। लेकिन क्या है कि इंसानों पर हुकूमत की जा नहीं सकती है, इंसानों के दिलों पर हुकूमत की जा नहीं सकती। हमारा जोर चलता है अपनी जात के ऊपर, बस अपने तखय्युल के ऊपर, अपने तसव्वुर के ऊपर। तो जो कोई तब्दीली कर सकते हैं हम अपनी जात के अंदर कर सकते हैं, अपने तसव्वुर के अंदर कर सकते हैं, अपनी सोच के अंदर कर सकते हैं। लेकिन क्या किया जाए उन जुमलों का, उन जज्बों का जो मुनक्कश हो जाते हैं हमारे वजूद के पिनहा खानों में, और हमारे पास कोई रास्ता हुआ नहीं करता उनमें कोई तब्दीली लाने का, उनको हम कबूल कर लिया करते हैं। जहां तक हमारी अपनी जात का ताल्लुक हुआ करता है हम तब्दीलियां करते रहते हैं, लेकिन ये मोहब्बतों का जज्बा और इसके करीने, ये मोहब्बत सिर्फ हमारी अपनी जात तक महदूद रहती नहीं है। कोई तो होता है जिससे मंसूब करते हैं हम इस जज्बे को, और कभी कभी पूरी जिंदगी बीत जाती है इस जज्बे को समझने में और इसको टटोलने में। वो इंसान जो सख्त जान हुआ करता है और कयामतों को सह लिया करता है, एक वक्त आता है कि मुजमहिल होकर ये इकरार करता है कि ये तकलीफ उसकी बर्दाश्त से ज्यादा थी, या वो इस तकलीफ का सामना करना नहीं चाहता था। वो महजूरी की तकलीफ जो
जो इंसान कभी तसव्वुर नहीं कर सकता, इस मोहब्बत के जज्बे से सरशार होते हुए वो दूरी की तकलीफ़।

वो जो कुछ जहन पे जहन में मुनक्कश होता है, जहन में बढ़ता चला जाता है, उसको मिटाना और उसको भुलाना, इंसान इसी तगड़ों में लगा रहता है और आखिरकार हार मान लेता है और कह देता है कि नहीं हो सकता। लेकिन ये जज्बा तो कुछ सिखाने आता है, कुछ बताने आता है, जो इससे जो नतीजा खस कर ले उसको वो मिल जाता है। हमारे वजूद के अंदर मुंजमद ये जज्बा, इसका जो मकसद है ये वो पूरा करता है। इंसान जिसकी तमकिनत हुआ करती है आज की आज के इस दौर में, इस तरक्की के दौर में, वो दावा करता है कि वो पाताल तहों तक पहुंच चुका है, वो सितारों पर कमंदे डाल चुका है, वो समंदरों की गहराई को माप चुका है, वो सहराओं की खाक छान चुका है। ये मोहब्बत उस इंसान को कितना आजिज कर देती है कि कुछ नक्श उससे मिटाए नहीं जा रहे होते अपने अपने वजूद के अंदर। वो तहरीर नक्श, वो एक दौर जो उसका माजी बन चुका होता है और कोई एक इंसान उससे मंसूब होता है, कोई एक मुस्कान उससे मंसूब होती है, कोई एक लहजा, कुछ नकोश हुआ करते हैं बस कुछ तस्वीरें। इंसान अपनी आजजी का इकरार कर लेता है, मान लेता है कि वो दौर नहीं भुला सकता, वो इंसान नहीं भुला सकता, और कोई हो जो ये पैगाम वहां पहुंचा दे। शब रोज गुजरते जाते हैं और इस जज्बे को तकवीयत मिलती चली जाती है। दिन निकलते हैं, बिखर जाते हैं, शहर बसते हैं, उजड़ जाते हैं, दस्तकें आहनी दरवाजे पर सर को टकरा के पलट जाती हैं। गुंबद-ए-खामशी गिरता ही नहीं, चलती रहती है हवा खेतों में दालानों में और अपने ही तलातों में उतर जाती है। हर तरफ फूल बिखर जाते हैं, दिल की मट्टी पे कोई रंग उतरता ही नहीं, आंख नजारा मोहूम से हटती ही नहीं, जहन इस हुजलाए तारीकी और तन्हाई में अपने कांटों पे पड़ा रहता है। वक्त आता है, गुजर जाता है, तुम जो आते हो तो तरतीब उलट जाती है, धुंध जैसे कहीं छड़ जाती है, नर्म पोरों से कोई होले से दिल की दीवार गिरा देता है, एक खिड़की कहीं खुल जाती है, आंख एक जलवाए सदरंग से भर जाती है। तुम जो आते हो तो तरतीब उलट जाती है, धुंध जैसे कहीं छट जाती है, नर्म पोरों से कोई होले से दिल की दीवार गिरा देता है, एक खिड़की कहीं खुल जाती है, आंख एक जलवाए सदरंग से भर जाती है। कोई आवाज बुलाती है हमें, कोई आवाज। तुम जो आते हो तो इस हब से दुखन के घर से रंजे आइंदा और रफ्ता की थकावट से निकल लेते हैं, तुमसे मिलते हैं तो दुनिया से भी मिल लेते हैं। तुम जो आते हो तो तरतीब उलट जाती है, तुमसे मिलते हैं तो दुनिया से भी मिल लेते हैं। दिन निकलते हैं।

ज्यादा सदे दिल बर माही मैं तो यार बुलाया जाता नहीं सिर रख के यार दे कदमा विच

नहारा इश्क और ना दुनिया थकी है, नहारा है इश्क और ना दुनिया थकी है, दिया जल रहा है, हवा चल रही है, सुकून ही सुकून है, खुशी ही खुशी है, तेरा गम सलामत मुझे क्या कमी है, तेरा गम सलामत मुझे क्या कमी है, वो मौजूद है और उनकी कमी है। जिसे इश्क कहते हैं शायद यही है, चिरागों के बदले मकान जल रहे हैं, नया है जमाना नई रोशनी है। जफाओं पे घुट घुट के चुप रहने वालों, खामोशी जफाओं की ताईद भी है। मेरे राहबर मुझको गुमराह कर दे, सुना है कि मंजिल करीब आ गई है। पांव पे घुट घुट के चुप रहने वालों, खामोशी जफाओं की ताईद भी है। मेरे राहबर मुझको गुम

0: बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा। सलाम
1: तू
0: पर।
1: जिसे देख के झुक जाती हैं यूं चांद की नजरें।
0: अच्छा,
1: जिसे देख के झुक जाती हैं यूं चांद की नजरें, उसे महफिल में हसीनों का खिताब मिला है। तू आया तो मेरे गुलशन को शबाब मिला है।
0: ठीक है।
1: वो तरसते रहे सतारों की मुलाकात को तारिक। वो तरसते रहे सतारों की मुलाकात को तारिक। मुझे चौखट पे सदा दे के महताब मिला है।
0: बहुत अच्छा।
1: तू आया तो मेरे गुलशन को शबाब मिला है।
0: बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा।
1: बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको खुश रखे, आपका प्रोग्राम सलामत रहे, और सुनने वालों को अल्लाह ताला सलामत रखे।
0: बहुत शुक्रिया जी, सलामत रहिए। अल्लाह हाफिज़। चंद पैगामात शामिल करूंगा। जनाब आसिफ नियाजी हैं मियाँ वाली से, और सलाम पेश करते हैं। वालेकुम अस्सलाम। आबिद अली सियालकोट से सुनते हैं, और आपने भी सलाम पेश किया, नंबर पूछा आपने जी, 9202540 नंबर है, 9202540। शहला हैं, सलाम पेश किया आपने, वालेकुम अस्सलाम, प्रोग्राम आपको पसंद आ रहा है, बहुत शुक्रिया। सईद ख्वाजा हैं, और सईद ख्वाजा कदीराबाद, कदीराबाद मुल्तान शायद जगह का नाम है, और आपने कहा कि आहिस्ता से यानी स्लो मोशन में कहें सलामत रहें। अच्छा ठीक है जनाब। लाहौर से हमारा साथ दिया है किसने, नाम ने लिखा, आपने कहा शो कब होता है। जनाब आज की रात जैसे इतवार और पीर की दरमियानी शब है, इसमें प्रोग्राम होता है जनाब। तनवीर खान है पिशावर कंट से, और प्रोग्राम आपको पसंद आ रहा है, बहुत शुक्रिया। आपका अधूरा मैसेज पहुंचा है जनाब, आपने कोई सवाल भी किया वो मुकम्मल नहीं पहुंच सका। इसके अलावा हमारे साथ हैं हरम अब्बासी, और शायरी आपको पसंद आई, बहुत शुक्रिया। अमर रामेश कुमार हमारे साथ हैं, और सद्दाम हमारा साथ देते हैं, वकास तबस्सुम साथ दे रहे हैं, आबी महमूद हमारे साथ हैं, और जीशान साथ देते हैं, गुल यासीन नाज हैं, और मोहसिन अली साथ दे रहे हैं, जन्नत सलीम हैं, फसीहा जन्नत हैं, हुमा खान हैं, फैसल अब्बास साथ दे रहे हैं। आप तमाम की शिरकत का बहुत शुक्रिया जी। कॉलर शामिल करते हैं, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह
0: जनाब।
2: हमीद गुलार्स करने वाले साहब राजमंडी से।
0: ठीक है, कैसे हैं आप? ठीक है जनाब।
2: मैं सोच रहा था ये स्लो मोशन में कैसे पढ़े जाते हैं।
0: अच्छा सही है, मुझे स्लो मोशन में कुछ पढ़ने को कहना वैसे ही ज्यादती है, इससे स्लो क्या होगा।
2: मंगल सिनी मंगल नसीम का एक कथा है, गजल सुनाते हैं आपको।
0: सुनाए।
2: देखे तो कहते हैं कि इसकी पना ले कभी उसकी पना ले। इसकी पना ले
0: कभी उसकी
2: कभी पना। उसकी पना ले, कर ली न तूने जिंदगी अपनी तबाह ले।
0: ठीक है।
2: इसकी पना ले कभी उसकी पना ले, कर ली न तूने जिंदगी अपनी तबाह ले। और ठहरा दिया न तुझको ही सबने गुनहगार। ठहरा दिया न तुझको ही सबने गुनहगार। ले और अपने सर पे तू सबके गुना ले। ले। बाहर लोगों को बड़ा शौक होता है ना।
0: हाँ
2: ठीक है, मैंने कहा
0: सही है।
2: सही दोषी साहब की गजल के चंद अशआर हैं
0: जी। इरशाद
2: सर, देखिए इस गजल को, के कोई खुशी मेहमान जरा सी होती है।
0: कोई खुशी मेहमान जरा सी होती है,
2: लब पे तब मुस्कान जरा सी होती है।
0: बहुत अच्छा।
2: और बस्ता कब है कोई ताज्जुब आंखों में। बस्ता कब है कोई ताज्जुब आंखों में, बस पुतली हैरान जरा सी होती है।
0: बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
2: और फिर से आ जाता है आदम होर कोई।
0: پھر سے آ جاتا ہے آدم خور کوئی,
2: بستی جب گنجان ذرا سی ہوتی ہے.
0: بہت اچھا بہت اچھا.
2: شیر آپ کی نظر کر رہا ہوں کہ شاعر لوگ تو چڑیوں جیسے ہوتے ہیں.
0: شاعر لوگ تو چڑیوں جیسے ہوتے ہیں.
2: شاعر لوگ تو چڑیوں جیسے ہوتے ہیں, دل چھوٹا سا جان ذرا سی ہوتی ہے.
0: اچھا.
2: دل چھوٹا سا جان ذرا سی ہوتی ہے. غزل کا آخری شعر تھا کہ پیار کا پردہ آ جاتا ہے آنکھوں پر. پیار کا پردہ آ جاتا ہے آنکھوں پر جب تیری پہچان
0: ذرا سی ہوتی. بہت اچھا.
2: میں نے وہ مرتضیٰ حیدر صاحب کے پروگرام میں ایک بات کی, آپ کے پروگرام میں بات کر رہا ہوں. ایک غزل ہے شکیب جلالی کی, آگ کے پتھر تو میرے سہن میں دو چار گرے. جو بھی کالر اس کو پڑے گا اس کو 5,000 روپے انعام دوں گا میں. کتنا؟
0: اچھا 5,000. کالر کو کیا دیا؟
2: آپ کوئی بھی کال پہ پڑے گا نا, ظاہری بات ہے.
0: اچھا میں نہیں پڑھ سکتا, مجھے
2: نہیں پڑھیں گے.
0: مجھے
2: کالر پڑے گا.
0: مجھے کیوں نہیں ملیں گے
2: جی؟
0: مجھے کیوں نہیں ملیں گے؟
2: نہیں آپ اگر آپ سے پڑھوائیں گے نا تو پھر میں اور آپ اور انداز میں بات کریں گے.
0: اچھا نہیں لیکن لیکن لیکن
2: کالر
0: لیکن یہ لیکن یہ آفر کالر کے لیے کیوں, میرے لیے کیوں نہیں ہے یہ بتائیں.
2: نہیں یہ تو اگر ہوتی تو میں مرتضیٰ حیدر صاحب کو کہتا آپ کے لیے بھی ہے نا.
0: اچھا مطلب آپ بھی ہم پڑھ لیں گے.
2: ماشاء اللہ اچھے انداز میں پڑھتے ہیں, سارے پڑھنے والے ہیں نا. میں یہ کسی وجہ سے کہہ رہا ہوں.
0: اچھا غزل کون سی بتائی آپ نے؟
2: پوری مزیدار طریقے سے جیسے غزل کو پڑھا جاتا ہے.
0: اچھا کون سی غزل ہے یہ تو بتائیں.
2: شکیب جلالی کی بڑی مشہور غزل ہے, آ کے پتھر تو تیرے ذہن میں دو چار گرے.
0: آ کے پتھر
2: تو میرے ذہن میں دو چار گرے.
0: ٹھیک ہے چلے ٹھیک.
2: اب آپ نے نہیں پڑھنا ہے اس کو اس پروگرام میں, ٹھیک ہے نا؟ میں نے پڑھی ہوئی ہے پوری. میں کسی وجہ سے کہہ رہا ہوں یہ, میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ جن لوگوں کو بڑا شوق ہوتا ہے نا ذرا یہ ہو گیا یہ ہو گیا, میں کہتا ہوں یہ آپ ذرا پہلے غزل تو ذرا پڑھ کے سنائے نا, بڑا مزہ آئے گا سر.
0: اچھا
2: سننا چاہتا ہوں.
0: ٹھیک ہے
2: اردو کے پروگرام ہے, سمجھ رہے ہیں نا آپ بات؟
0: ٹھیک ہے بالکل سمجھ رہا ہوں جناب.
2: دوں گا میں 5,000 روپے, آپ کو پتا ہے میں زبان کا بڑا پابند آدمی ہوں.
0: چلے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جناب.
2: خوش رہیں خوش رہیں. سلامت
0: سلامت رہیے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.

मेरे साकिया मुझे भूल जा। मेरे साकिया मुझे भूल जा, मेरे दिलरुबा मुझे भूल जा। ना वो दिल रहा, ना वो जी रहा, ना वो दौरे ऐशो खुशी रहा, ना वो रब तो जब्ते दिली रहा, ना वो जे तिश्ना लबी रहा, ना वो जोखे बादा कशी रहा, ना वो जोखे बादा कशी रहा। मैं अलम नवाज हूं आजकल, मैं शिकस्ता साज हूं आजकल, मैं सरापा राज हूं आजकल। मुझे अब ख्याल में भी ना मिला, मुझे भूल जा, मुझे भूल जा। मुझे जिंदगी से अजीज तर फकत एक तेरी ही जात थी, तेरी हर निगाह मेरे लिए सबबे सकून हयात थी। मेरी दास्तान वफा कभी तेरी शरह हुस्न सिफात थी, मगर अब तो रंग ही और है, अब तो रंग ही और है। ना वो तर्ज है, ना वो तौर है, ये सितम भी काबिल गौर है। तुझे अपने हुस्न का वास्ता, मुझे भूल जा, मुझे भूल जा, मुझे भूल जा। कसम इस तराबे हयात की, मुझे खामशी में करार है। कसम इस तराबे हयात की, मुझे खामशी में करार है। मेरे सहने गुलशन इश्क में ना खिजा है अब ना बहार है। यही दिल था रौनक अंजुमन, यही दिल चिराग मिजार है। मुझे अब सकून दगर न दे, मुझे अब नवीदे सहर न दे, मुझे अब फरेब नजर न दे। ना हो वहम इश्क में मुबतला, ना हो वहम इश्क में मुबतला। मुझे भूल जा मेरे साकिया, मुझे भूल जा मेरे दिलरुबा, मेरे दिल रुबा मुझे भूल जा। ना वो दिल रहा, ना वो जी रहा, ना वो दौरे ऐशो खुशी रहा, ना वो रब तो जब्ते दिली रहा, ना वो जे तिश्ना लबी रहा, ना वो जौके बादा कशी रहा।

साथ दिल के चले, दिल को नहीं रोका हमने, जो न अपना था उसे टूट के चाहा हमने। एक धोखे में कटी उम्र हमारी सारी, क्या बताएं किसे पाया किसे खोया हमने।